जिस हृदय में दया होती है वहां प्रेम, शांति और मानवता स्वतः निवास करती है। दया केवल दूसरों पर तरस खाने का नाम नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति संवेदनशीलता, सहयोग और सम्मान का भाव है। एक दयालु व्यक्ति अपने व्यवहार से समाज में प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाता है। इसलिए हमें हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और सभी के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए।

ये था आज का अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं इस मातृ वंदना से।

आज का अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं इस मातृ वंदना से।

अभी आप तृप्ति साख्या और साथियों की आवाज़ों में ये भजन सुन रहे थे। श्रोताओं, भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये नाथ।

0: जानुब बाबू कव्वाल और साथियों के गाए इस नाद के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 5:55 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ चर्चा करें पपीते की खेती के संदर्भ में। हमारे द्वीपों की गर्म व आर्द्र जलवायु पपीते की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। पपीता आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फल है। इसका पौधा एक वर्ष में ही फल देने लगता है। पपीता पाचन शक्ति को ठीक करता है। इसमें विटामिन, प्रोटीन, वसा, फाइबर, अम्ल आदि पाए जाते हैं। पपीते से पपेन नामक पदार्थ भी बनाया जाता है, जो कि दवाइयाँ बनाने के काम में आता है। इससे सब्जी, कोफ्ता, हलवा आदि तरह तरह के खाने के पदार्थ भी बनाए जा सकते हैं। जहाँ तक पपीते की खेती का सवाल है, पपीता लगाने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जहाँ पर धूप आती हो तथा जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। वैसे तो पपीते की खेती हर किस्म की मिट्टी में हो सकती है, लेकिन फिर भी दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा उत्तम होती है। ज़मीन से खरपतवार वगैरह साफ करके पौधे से पौधे की दूरी 2.5 मीटर रखते हुए आप 60 घन सेंटीमीटर का गड्ढा बना लें, यानी 60 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा तथा इतना ही गहरा। इन गड्ढों में आधी मिट्टी व आधी गोबर की सड़ी खाद मिलाकर भर दें। जब मिट्टी बैठ जाए तो इसमें आप पपीते की रोपाई कर सकते हैं। हमारे इन द्वीपों के लिए पपीते की उन्नत किस्में हैं वाशिंगटन हनीड्यू, कोयम्बटूर, कुर्ग हनीड्यू, नन्हा व सोलो आदि। सोलो किस्म काफ़ी स्थायी पाई गई है, यानी इसमें पैदावार हमेशा अच्छी मिलती है। पपीते की आप पौध की रोपाई करते हैं, अतः ज़रूरत इस बात की है कि पौध पहले तैयार कर ली जाए। पौध तैयार करने के लिए ज़मीन की सतह से 6 इंच ऊंची उठी क्यारियों को बनाएं, जिसमें अच्छी सड़ी गोबर की खाद मिलाकर बीजों की बुआई करके उसे नारियल की पत्ती आदि से ढक दें ताकि नमी सुरक्षित रह सके। सुबह व शाम के वक्त सिंचाई की व्यवस्था करें। जब पौधे छोटे हैं तो उनकी देखभाल करें।

0: जब पौधों में तीन पत्तियां आ जाए तो उन्हें निकालकर दूसरी क्यारी में 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी में लगा देते हैं, और जब ये पौधे 20 से 25 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं तो इनको मुख्य खेत में, यानी जो गड्ढे आपने पहले बनाए हैं, उनमें रोपाई कर देनी चाहिए। 1 हेक्टेयर पपीते का उद्यान लगाने के लिए 200 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। पौधे में नर व मादा फूल अलग अलग होते हैं तथा कुछ पौधों पर उभयलिंगी फूल भी आते हैं। पपीते में केवल मादा व उभयलिंगी पौधे ही फल देने योग्य होते हैं। पपीते की उचित रोपाई के लिए एक गड्ढे में 3 पौधे लगाने चाहिए। इनमें एक पौधा मादा अथवा उभयलिंगी निकलने की संभावना ज्यादा होती है। बागान में 20% नर पौधे रखे जाते हैं जिससे कि मादा फूलों का सेचन अच्छी तरह से हो सके। इस अनुपात में नर व मादा पौधों को रखकर गड्ढे में केवल एक पौधा रखते हुए बाकी पौधों को उखाड़कर फेंक दें। किसान भाइयों, आजकल जो किस्में हम लगाते हैं, जैसे सोलो, कोयम्बटूर व हनी ड्यू आदि, इनमें मादा व उभयलिंगी पौधे ही निकलते हैं, इसलिए इनको केवल एक गड्ढे में एक ही पौधा लगाया जाता है। पपीते के पौधे को लगाने के एक माह बाद 50 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट व 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधे के हिसाब से 1 फीट की दूरी पर चारों ओर रिंग बनाकर मिट्टी में मिला दें। इसके बाद एक माह बाद फिर से 150 से 200 ग्राम यूरिया पौधे के चारों तरफ 2 फीट के घेरे में डालकर मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला दें। 4 या 5 महीने पश्चात 35 से 40 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद प्रति पौधा दें। पुनः 8 से 9 महीने बाद इतनी ही खाद की मात्रा पौधों को दें। लंबा सूखा मौसम होने पर सिंचाई की व्यवस्था करें और खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें। लगभग 10 से 12 महीने का पौधा फल देने लगता है। अधिकतर फल फरवरी मार्च में पककर तैयार हो जाते हैं। वैसे हमारे इन द्वीपों में पपीते से फल साल भर मिलते रहते हैं। किसान भाइयों, पपीते में भी बहुत सारे कीड़े एवं बीमारियों का प्रकोप होता है, जिससे रोकथाम के लिए आपको पौधरक्षा विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार समय समय पर नियंत्रण उपाय करने चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और यह विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार

0: देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का अंदेशा जताया है। संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज खेले जाने वाले सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, ओडिशा, महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has underscored that India has a rich tradition of storytelling and an extraordinary pool of creative talent, which can be leveraged to strengthen the nation's position as a global hub for content creation. In a social media post, Mr. Modi informed that he met the co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, in New Delhi. The Prime Minister also noted that during the meeting, they discussed the immense potential of India's media and entertainment sector. Meanwhile, Netflix India said that during the meeting, the two leaders discussed their shared vision of taking India's media and entertainment industry to the global stage. The streaming platform also announced the launch of the Netflix India Storytelling Initiative, an investment aimed at nurturing the next generation of India's creative talent through skilling and education partnerships with the Indian Institute of Creative Technologies and the National Film Development Corporation. India has urged Sri Lanka to cooperate in the early release of Indian fishermen and their boats detained by its authorities, while reiterating that a humanitarian approach should guide the handling of the long-pending issue. The matter figured prominently during Foreign Secretary Vikram Misri's discussions with the Sri Lankan leadership during his official visit to Colombo. Mr. Misri arrived in Colombo yesterday for a day-long visit. He held separate meetings with the

आश्रम से रवाना होगा और इसकी वापसी अगले दिन शनिवार 8 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान की यात्रा पर एमवी कैमल भी कल शुक्रवार 7 तारीख को रात 9 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा। जलियान अगले दिन शनिवार 8 तारीख को सवेरे 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर कल 7 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन 8 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल शुक्रवार 7 तारीख को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलियान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी रानी लक्ष्मी कल प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल 7 तारीख को प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलियान कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल शुक्रवार 7 तारीख को दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलियान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप जाएगा और स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे। एमवी रंगत स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल शुक्रवार 7 तारीख को दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलियान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी हडबे कल शुक्रवार 7 तारीख को दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। और एमवी रानी चंगा स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल 7 तारीख को शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलियान अगले दिन शनिवार 8 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा।

0: अभी आप जलियानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष नमस्कार, सुप्रभात। इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं एक ऐसा शब्द जो हमारी आंखों के सामने तो हर रोज होता है, लेकिन शायद उसके अर्थ पर हम कम ही सोच पाते हैं, और वो शब्द है धुआं। जी हाँ, धुआं जब कभी किसी गांव के चूल्हे से उठती है तो भूख मिटाने की खुशी देता है। मंदिर की धूप से उठता धुआं श्रद्धा की खुशबू बन जाती है, और सैनिक के रणक्षेत्र की धुआं हमारी शांति का सबब बनती है। लेकिन कभी कभी किसी हादसे से मिला धुआं बहुतों के जीवन का दर्दनाक कहानी बयां करती है। 6 अगस्त 1945 इतिहास का वह दिन जब जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराकर कुछ ही पलों में पूरे शहर को धुएं के एक विशाल गुबार में बदल दिया। वह धुआं केवल इमारतों का नहीं था, बल्कि लाखों सपनों, उम्मीदों और इंसानी जिंदगियों का था।

0: अक्सर हम कहते हैं कि जिंदगी धुएं की तरह उड़ गई। कुछ हद तक ये सही लगती है, लेकिन हर धुआं ऐसा नहीं होता। कुछ धुआं हमें देती है खुशियों की लौ, तो कुछ देती है संघर्ष की तपिश। कुछ धुआं उम्मीदों को उजाला देती है, तो कुछ धुआं जीवन की डगर को धुंधला कर देता है। लेकिन धुएं की सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमेशा के लिए नहीं रहता। समय की हवा उसे अपने साथ उड़ा ले जाती है। धुआं चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, हवा का एक झोंका उसे बिखेर देता है।
1: ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो, मैं पागल दीवाना तेरा। मुझे इश्क की आग में जलने दो, ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो, मैं पागल दीवाना तेरा।

धुआं सिर्फ हवा में उड़ने वाला कण नहीं है, बल्कि जीवन का एक प्रतीक भी है। यह हमें सिखाता है कि जहां धुआं है वहां आग भी है, और जहां आग है वहां उजाला होने की संभावना है। हमें चाहिए बस थोड़ा सा भरोसा और विश्वास कि हर धुआं या धुंध के बाद एक साफ आसमान और एक साफ सवेरा जरूर आता है। इसी विचार के साथ चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए रामचरित मानस गान की 322वीं कड़ी।

आसुरी माया और भांति भांति के शस्त्रों से अकेले मेघनाद ने युद्ध भूमि में प्रलय सा मचा दिया है। रावण के अन्य योद्धा भी युद्ध में आ डटे हैं। इधर अपने दल बल समेत विशाल भुजाएं, चौड़ा वक्षस्थल और रक्ताप नेत्रों वाली लक्ष्मण ने मोर्चा संभाला है। भयानक मारकाट मची है, जहां तहां रुंड मुंड उड़ रहे हैं। भयानक निनाद से वातावरण प्रकंपित है। रक्त से गड्ढे भर गए हैं, जिन पर जमी धूल ऐसी दिखाई देती है जैसे अंगारों पर राख की परत बैठ गई हो। ऐसा लगता है कि कोई किसी को जीत नहीं सकता। तभी लक्ष्मण के बाणों से मेघनाद का रथ सारथी समेत टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। प्राणों पर संकट आया देख मेघनाद शक्तिवाण चलाता है, जिसके छाती में लगते ही लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर लुढ़क जाते हैं। योद्धाओं की सहायता से मेघनाद उन्हें उठा ले जाना चाहता है, किंतु धरती का भार अपने फन पर वहन करने वाले शेषनाग के अवतार लक्ष्मण

को भला कौन उठा सकता है? अनेक योद्धा लक्ष्मण का अचेत पड़ा शरीर उठा लेना चाहते हैं, किंतु ऐसा करने में असफल होकर लज्जित हो वापस चले जाते हैं। संध्या हो आई, सभी वीर अपने अपने शिविरों में लौट आए, किंतु लक्ष्मण कहाँ हैं? श्री राम का ये प्रश्न मुखरित भी नहीं हुआ था कि हनुमान उन्हें ले आए। अनुज का ये हाल देखकर श्री राम अत्यंत व्यथित हो गए।

अभी आप रामचरितमानस गान की 322वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे तथा संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 6:40 हुए हैं। श्रोताओं, वतन के गीत कार्यक्रम के तहत लीजिए अब सुनिए कुछ देश गान।

अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के तहत कुछ देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी जानकारी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना है, जिस कारण समुद्र काफी अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को 9 अगस्त तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। और अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद सवेरे 7 सुनिए जन सूचनाएं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा 7:05 पर। सवेरे 7:15 पर देश गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा देश रागनी, जबकि आप विविध भारती मुंबई से सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में 7:23 पर पर्यावरण कार्यक्रम के तहत श्री भानु प्रताप यादव से ली गई भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी, पर्यावरण संबंधी वैश्विक समस्याएं। तत्पश्चात आप कुछ फिल्मी गीतों का आनंद भी ले पाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर कलाकार होंगे मुकेश, रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर। सवेरे 9 आनंद लीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर यू श्रीनिवास का कर्नाटक शैली में मैंडोलिन वादन आप सुन पाएंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम SMS माई चॉइस का लुत्फ उठाइए सवेरे 10:00। दिन के 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1344वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा 11:30 पर। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम में श्रोता कुछ सुप्रसिद्ध गीत सुन पाएंगे। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम होगा। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे जगजीत सिंह।

और चित्रा सिंह, आपके नाम फिल्मी पैगाम। फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए दोपहर 1:30 पर और दोपहर बाद 2:30 बजे। मौसम की जानकारी के बाद हमारे प्राइमरी चैनल पर पहली सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा नॉनस्टॉप म्यूजिक और 3:30 पर कार्यक्रम होगा यू ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम से, जिसमें सूचनाओं के अलावा सवाई गांव के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गीत आप सुन पाएंगे। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की चौथी कड़ी प्रसारित की जाएगी शाम 4:30 पर। शाम 4:40 पर हम आपको कार्यक्रमों के विवरण से अवगत करवाएंगे। बहारों की शाम फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए शाम 4:45 पर। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम में कृषि संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। बांग्ला कार्यक्रम में 5:30 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा चिरंतनी। संध्या 6 बजे किसानवाणी कार्यक्रम में पशु आहार विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश आनंद बाला से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी, पशुओं में पौष्टिक आहार की अहमियत। 6:30 पर कुमारी रश्मि शर्मा द्वारा लिखा नाटक आप सुन पाएंगे एक किरण रोशनी की। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं सुनिए 7:15 पर। सात बजकर 20 मिनट पर सुनिए कुछ फिल्मी गीत। संध्या 7:30 पर युवाणी के तहत पत्रिका कार्यक्रम होगा युवा संसार। तत्पश्चात आप सुन पाएंगे लघु रूपक, स्तनपान मातृत्व नहीं बल्कि जिम्मेदारी। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा 8:15 पर। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरव गान, जबकि आप 10:00 विविध भारती मुंबई से सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा 8:00 सुनिए संसद समीक्षा, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड, 9:45 पर इनसाइट्स कार्यक्रम और 10:00 संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुन पाएंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: प्रधानमन्त्री अवदत् यत् तयोः मध्ये भारतस्य मनोरञ्जनक्षेत्रस्य विशालसम्भावनाविषये अपि विस्तृतः विचारविमर्शः अभवत्। विश्वस्य प्रमुखसामाजिकमाध्यममञ्चानां मूलसंस्थायाः मेटा इत्यस्य मुख्यकार्यकार्यधिकारिणा मार्क जुकरबर्ग इत्यनेन बालयौनशोषणसामग्री तदनुषंगिकसामग्री कृत्रिमतया निर्मितसामग्री चेत्येषु अथ मञ्चसञ्चालने च जातदोषान् अधिकृत्य भारतप्रशासनात् क्षमा याचिता। सूत्राणामनुसारं मेटासंस्थया स्वीकृतं यत् केषाञ्चन प्रकाराणां सामग्रीणां प्रचाराय बहुधनराशिः व्ययिता आसीत्। भारतप्रशासनेन मेटासंस्थायै एतत् स्पष्टीकृतं यत् सा मध्यस्थपरिभाषायाः अन्तर्गतं न आयाति, यतः सा संस्था एव निर्धारयति यत् का सामग्री कस्मै प्रेषणीया इति। मेटासंस्थया स्वदोषः स्वीकृतः तथा तस्मिन् विषये दुःखं च व्यक्तम्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतम् अफ्रीकादेशैः सह समावेशिनम् आवश्यकताधारितञ्च विकाससहयोगं समर्थयति, यत् स्थानीय सामर्थ्यं सुदृढीकृत्य राष्ट्रिय प्राथमिकतानां पूर्तौ सहायकं भवति। ह्यः नवदिल्ल्याम् अफ्रीका दिवसावसरे अवदत् यत् अफ्रीकादेशानां प्रमुखव्यापारनिवेशसहभागिषु भारतमपि अन्यतममस्ति इति गौरवस्य विषयो वर्तते। गतवर्षे उभयोरपि मध्ये 93 अर्बुद डॉलर मितः द्विपक्षीय व्यापारः जातः। सः एतदपि अवदत् यत् अफ्रीकादेशेषु भारतस्य निवेशः आहत्य 80 अर्बुद डॉलर मिताधिकः जातः, येन भारतं तत्रत्य प्रमुखनिवेशकदेशेषु अन्यतमं जातम्। हॉकी क्रीडायां 16 भारत कनिष्ठ पुरुष राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धायाः डिवीजन ए इत्यस्य उपान्त्यचरणे उड़ीसा पंजाब झारखंड मध्यप्रदेश राज्यानां दलानि प्रवेशं कृतानि। तमिलनाडु राज्यस्य कोयम्बतूर नगरे ह्यः सम्पन्नेषु प्रागुपान्त्यचक्रे पंजाब दलेन कर्नाटक दलं 5-2, उड़ीसा दलेन हरियाणा दलं झारखंड दलेन समतायाः अनन्तरं शूटआउट पद्धत्या उत्तर प्रदेश दलम् अथ मध्य प्रदेश दलेन दादर नागर हवेली दमन दीव दलम् च 7-3 इत्यंकांतरालेन पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7 बजे हैं जन सूचनाएं। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 16.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 97% और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 30.8 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:07 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:43। और अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी उड़ान भरेगा आज दिन के 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। एक सूचना, क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल

थिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रेल डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दें। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। सूचना समाप्त हुई।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। इस अंतराल के बाद
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए चल रही प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में नशीली दवाओं को कहें ना विषय के साथ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशासनिक कारणों से 8 अगस्त को होने वाले लाइट एंड साउंड शो के कार्यक्रम में संशोधन किया गया है और अंडमान निकोबार राज्य ओलंपिक संघ की ओर से जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की समय सारणी जारी की गई।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए चल रही पहलों की समीक्षा की गई और प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता, सुलभता और समावेशिता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। शिक्षा मंत्री ने भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया, जो प्रत्येक विद्यार्थी को सशक्त बनाएगी और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देगी। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में एंटी ड्रग स्क्वाड के नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में नशीली दवाओं को कहें ना विषय के साथ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पल देवदास ने छात्रों से नशा मुक्त रहने और एक सार्थक भविष्य के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे की आदतों के शिकार होने के बजाय अपनी

ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक गतिविधियों में लगाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर मुख्यालय एसएसबी असम के कमांडेंट पराग चतुर्वेदी ने भारत में बढ़ते नशे के खतरे पर तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत किए तथा गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बीच स्थित अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति देश की संवेदनशीलता के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पर वीडियो प्रस्तुति और संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए। ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान एवं स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से हाल ही में विकसित भारत जी राम जी योजना पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए विभाग के निदेशक डॉक्टर अपूर्व शर्मा ने प्रतिभागियों को समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ योजना के उद्देश्यों को अपनाने को कहा। प्रशिक्षण में प्रखंड विकास अधिकारियों, कार्यक्रम अधिकारियों और क्षेत्रीय कर्मियों ने भाग लिया। हैदराबाद स्थित एनआईआरडी के विषय विशेषज्ञों ने प्रभावी रणनीतियों पर जानकारी दी। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से कृषि यांत्रिकरण और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार, उद्यमियों और स्टार्टअप से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवोन्मेषकी को परामर्श, इनक्यूबेशन तथा मार्गदर्शन सहायता प्रदान करना है। चयनित उम्मीदवारों के लिए 2 महीने का इनक्यूबेशन कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के तहत द्वीप कृषि प्रौद्योगिकियां, नारियल और मसालों का मूल संवर्धन, एकीकृत मत्स्य पालन, संरक्षित खेती, जैविक खेती के उत्पाद और जलवायु अनुकूल कृषि जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। इच्छुक उद्यमी और स्टार्टअप 15 अगस्त तक क्यारी के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। मत्स्य विभाग ने द्वीप समूह के पात्र स्वयं सहायता समूहों से विभाग के मत्स्य संग्रहालय सह जल जीव गृह परिसर में बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं पात्र स्वयं सहायता समूह निर्धारित दस्तावेजों के साथ अपने संबंधित खंड विकास अधिकारी की अनुशंसा सहित आवेदन 16 अगस्त तक सहायक निदेशक कार्यालय में जमा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय के तहत प्रशासनिक कारणों से 8 अगस्त को होने वाले लाइट एंड साउंड शो के कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार अब पहला शो, जो मूल रूप से हिंदी में निर्धारित था, अब अंग्रेजी में दिखाया जाएगा। दूसरा शो हिंदी में शाम 7:15 पर और तीसरा शो हिंदी में रात 8:15 पर दिखाया जाएगा। अंडमान निकोबार राज्य ओलंपिक संघ की ओर से अगस्त और सितंबर माह के दौरान श्री विजयपुरम में आयोजित होने वाली जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की समय सारणी घोषित की गई है। ओपन स्टेट माउंटेन बाइक साइकिलिंग चैंपियनशिप 16 अगस्त को आयोजित होगी, जिसके लिए प्रविष्टि की अंतिम तिथि 14 अगस्त है। इसके अलावा जिला टेबल टेनिस चैंपियनशिप, जिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप और जिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 22 तथा 23 अगस्त को आयोजित होगी। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। सभी इच्छुक खिलाड़ियों और टीमों से अपनी प्रविष्टियां निर्धारित गूगल फॉर्म के माध्यम से जमा करने को कहा गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र, गूगल फॉर्म लिंक और अन्य विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीटेक कार्यक्रमों की बची हुई सीटों पर प्रवेश हेतु परामर्श की समय सारणी जारी कर दी है। परामर्श 10 अगस्त को सुबह 9:30 संस्थान के सम्मेलन कक्ष में लिया जाएगा। इसके लिए पंजीकरण सुबह 8:30 से 9:30 तक होगा। अभ्यर्थियों को परामर्श के दौरान अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। दक्षिण अंडमान वन प्रभाग के तहत मोबाइल स्क्वाड रेंज की एक टीम ने कल माइल तिलक आरक्षित वन के छोटा पत्थर घूम क्षेत्र में छापेमारी कर 0.545 घन मीटर अवैध रूप से काटी गई पटाख लकड़ी के 18 टुकड़े बरामद किए। इस संबंध में भारतीय वन अधिनियम 1927 की विभिन्न धाराओं के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

0: अंडमान वन प्रभाग लोगों से प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में सहयोग करने और अवैध वन एवं वन्य जीव उत्पादों से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट हेल्पलाइन नंबर 03192-255-228 पर देने की अपील की है। प्रशासनिक कारणों से राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थान डिगलीपुर में अनुबंध के आधार पर होने वाले विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब ये परीक्षा 18 से 20 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा न्यूज़ हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। द डेली टेलीग्राम्स ने संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित करने के समाचार को अपनी पहली हेडलाइन बनाई है। द्वीप समाचार ने सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के उद्देश्य और पात्रता मानदंडों को स्पष्ट करने के समाचार के अलावा MSME से MSME सस्टेनेबल प्रमाणन योजना का लाभ उठाने की अपील करने की को प्रमुखता दी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रंगत द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पहचान और मूल्यांकन चिकित्सा शिविर आयोजित करने के समाचार को द अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी में जगह मिली है। इन्फो इंडिया ने JNRM में नशीले पदार्थों को कहें ना विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने प्रदेश भाजपा द्वारा हर घर तिरंगा रैली आयोजित करने के समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए चल रही प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में नशीली दवाओं को कहें ना विषय के साथ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशासनिक कारणों से 8 अगस्त को होने वाले लाइट एंड साउंड शो के कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। और अंडमान निकोबार राज्य ओलंपिक संघ की ओर से जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की समय सारणी जारी की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे की 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागनी।

देशराग्नि कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जब भी हम देश की भक्ति की बात करते हैं तो हमारे मन में कई विचार आते हैं, जिनमें शामिल है विविधता में एकता। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। आन देश की शान देश की हम संतान हैं। तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है।

श्रोताओं, भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ अलग अलग धर्म और संस्कृतियाँ और परंपराएं होने के बावजूद लोग एक साथ मिलकर एक राष्ट्र के रूप में रहते हैं। यह विविधता हमें अलग नहीं करती, बल्कि हमारी संस्कृति को समृद्ध करती है और एकता की भावना को दर्शाती है। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना।

0: দেশ রাগিণী।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश रागिनी। मीडियम वेव 438 सिस्टम लर 6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

श्रोताओं, सपनों को हकीकत बनाना है तो कदम आगे बढ़ाना होगा, थाम कर उम्मीद का दामन, कोशिशों को आजमाना होगा, हर ठोकर से सबक लेकर खुद को बेहतर बनाना होगा, डर कर बैठ जाना समाधान नहीं, खुद पर विश्वास जताना होगा। जी हाँ श्रोताओं, नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। और आज के इस सफर में मैं हूँ आपके साथ सुनीता।

0: तो श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले हम रुख कर रहे हैं पर्यावरण कार्यक्रम की ओर।
1: पर्यावरण कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, हम जिस धरती पर रहते हैं वही आज कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। बढ़ता तापमान, बदलता मौसम, प्रदूषण, घटती जैव विविधता, ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आने वाले खतरे की चेतावनी है। आज पर्यावरण की समस्याएं किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं रही बल्कि ये एक वैश्विक चिंता बन चुकी है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हमारे जीवन, स्वास्थ्य और भविष्य तीनों को प्रभावित कर रही है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हम इन

0: चुनौतियों को समझें, इनके कारणों पर चर्चा करें और समाधान की दिशा में मिलकर कदम बढ़ाएं। इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं रिटायर्ड डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर श्री भानु प्रताप यादव। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैडम, और आकाशवाणी श्री विजयपुरम के सभी सुधी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: सबसे पहले तो आप बताएं कि आज विश्व स्तर पर पर्यावरण से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियां कौन कौन सी हैं?
1: आज वैश्विक स्तर पर हम पर्यावरण संबंधी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं चुनौतियों के बारे में बात करूं, एक चीज़ हमें बहुत ध्यान से सोचनी है और समझनी है कि हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें, हम आइसोलेशन में नहीं हैं। पूरी पृथ्वी एक ग्रह है, यही पृथ्वी हमारा घर है, और इसीलिए स्लोगन भी है कि आवर प्लैनेट आवर पावर, यानी कि हमारी शक्ति जो है इसे हम इस ग्रह को बचाने में लगाएं। इसके अलावा वन प्लैनेट वन अर्थ वन फैमिली, तो हम सब एक ग्लोबल परिवार हैं। तो विश्व के किसी हिस्से में

0: में रहे हैं, हम आइसोलेशन में नहीं हैं। पूरी पृथ्वी एक ग्रह है, यही पृथ्वी हमारा घर है, और इसीलिए स्लोगन भी है कि अवर प्लैनेट अवर पावर, यानी कि हमारी शक्ति जो है इसे हम इस ग्रह को बचाने में लगाएं। इसके अलावा वन प्लैनेट वन अर्थ वन फैमिली, तो हम सब एक ग्लोबल परिवार हैं। तो विश्व के किसी हिस्से में अगर पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा काम हो रहा है तो उसका प्रभाव भी पूरे विश्व पे पड़ता है, और अगर कहीं कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी बुरा प्रभाव जो है पूरी दुनिया पे पड़ता है। अब रही गंभीर चुनौतियों की, तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, और उसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का है। और ग्लोबल वार्मिंग हम सभी जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें, जिसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब जो है वातावरण में जा करके एक आवरण सा बना देती हैं, जिससे सूर्य की किरणें किरण के रूप में जो धरती पे आ जाती हैं, धरती गर्म हो जाती है, पानी गर्म हो जाता है, लेकिन यही गर्मी जब हीट वेव के रूप में ऊपर वापस अंतरिक्ष में जाना चाहती है तो ये परतें उसे रोक देती हैं। तो इसकी वजह से धरती का तापमान, हमारे जो ग्लोब का तापमान है, वो लगातार बढ़ रहा है, और यह एक बहुत गंभीर चुनौती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे समुद्र तल जो हैं उन पे जो ग्लेशियर्स हैं हमारे ध्रुवों में, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, ये बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर जो हैं वो पिघल रहे हैं, और इनकी पिघलने की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है, और पिघल करके ये पानी जो है समुद्र में आता है और समुद्र तल जो है ये बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि 21वीं सदी के अंत तक अगर इसे हम नहीं रोकें और यह चक्र जो है ये बंद नहीं हुआ, रुका नहीं, तो समुद्र तल जो है 0.70 मीटर यानी 70 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। 70 सेंटीमीटर का मतलब आप समझ रहे होंगे कि 2 फीट से अधिक, और सोचिए कि अगर ऐसा होता है तो हजारों हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है तटीय क्षेत्रों की वो समुद्र में चली जाएगी, और इससे कम से कम 3 से 4 करोड़ लोग जो है वो विस्थापित हो जाएंगे।
1: आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात की
0: जी,
1: इसके मुख्य कारण क्या है और इसमें मानव गतिविधियों की क्या भूमिका है?
0: ग्लोबल वार्मिंग एक तो सबसे बड़ी जो समस्या है और जो कारण है वो हमारी अपनी गतिविधियाँ ही हैं। अब गतिविधियों की बात लें तो पहली चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ये लगातार बढ़ रहा है, मीथेन गैस का उत्सर्जन ये बढ़ रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड ये बढ़ रहा है, हमारे कारखानों से निकलता हुआ धुआँ वो बढ़ रहा है। इसके अलावा हम जो रासायनिक उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं या अन्य कल कारखानों में जो है रसायन प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सब मिल करके जो है ना एक चक्र सा बना देते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण है यातायात का साधन, जिसमें वाहन है हमारे, दो पहियों से निकलने वाला गैसें हैं, चार पहियों से वाहनों से निकलने वाली गैसें हैं, कल कारखानों से निकलने वाली गैसें हैं। इसके अलावा जो खेती की सीजन में फसल की कटाई के बाद, श्रोताओं ने अक्सर सुना होगा दिल्ली वगैरह जैसी जगह में, जब पंजाब वगैरह में पराली जलाई जाती है तो वायु प्रदूषण जो है वो कई गुना बढ़ जाता है, और उसकी गुणवत्ता जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है, PPM जो है 300-400 पार चला जाता है। तो ये मानव गतिविधियों से ही संबंधित है। दूसरी चीज़ जो है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम देख रहे हैं कि जो फॉरेस्ट फायर हैं, बुश फायर हैं, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इनकी वजह से जो है बहुत सारा वन क्षेत्र जो है वो भी घट रहा है। और हमारे पर्यावरण के लिए सबसे ज़रूरी दो चीज़ें हैं, एक हमारे समुद्रों का सुरक्षित रहना, जिसमें कि फाइटोप्लैंक्टन वगैरह होते हैं जिनसे हमें सबसे ज़्यादा 60-70% ऑक्सीजन मिलती है, और फिर हमारे वन क्षेत्र हैं जिनसे हमें न केवल ऑक्सीजन मिलती है बल्कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके उसे लॉक करके रखते हैं। तो वन क्षेत्र का घटना, इसका मतलब ये होता है कि हम कार्बन को लॉक करने की जो क्षमता है उसे कमतर करते जा रहे हैं, वो कम होती जा रही है। तो ये दो बड़ी समस्याएं हैं और इनका निदान हम ही कर सकते हैं।
1: अब बताइए, वायु, जल और भूमि प्रदूषण
0: जी
1: आज किस स्तर तक पहुंच चुके हैं, इसके दुष्परिणाम क्या हैं?
0: देखिए, वायु प्रदूषण से हम सभी परिचित हैं के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं धूल के, कण के, धुएं के, ये जब हवा में मिलते हैं तो वायु हमारी प्रदूषित होती है। इसके अलावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, अच्छा फिर जो दिवाली वगैरह के मौसम में जो पटाखे वगैरह जलते हैं उनसे भी प्रदूषण होता है। तो लोगों ने महसूस किया होगा कि ऐसे समय में नॉर्मल जो

0: व्यक्ति है उसको भी सांस लेना कठिन हो जाता है। तो वायु प्रदूषण का सबसे पहला इफेक्ट तो हमारे अपने ऊपर और जो भी जीव जंतु उनके ऊपर पड़ता है कि हमारे फेफड़े जो है वो क्षमता से कम काम करने लगते हैं। तो एक तो ये है, हमारे स्वास्थ्य पे इसका सीधा असर पड़ता है। दूसरा, जल प्रदूषण, ये भी एक गंभीर समस्या बन चुका है। और जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है जो कल कारखानों से निकलने वाला दूषित जल, ये अभी तक हम इसका उचित प्रबंधन वैश्विक स्तर पे भी शायद नहीं कर पाए हैं और ये सीधे सीधे जो है नदियों में नालों में जाता है, तो इससे भी जो है जल प्रदूषित होता है। इसके अलावा एक बड़ा कारण है कि भूमिगत जल स्तर जो है, यहाँ हम जो खेती करते हैं वो जैविक खेती नहीं करके हम रासायनिक उर्वरकों पर और रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भर करते हैं। तो कुछ समय के लिए तो हमें ये फायदा जरूर पहुंचाते हैं, हमारी फसल जो है अच्छी बनती है, हालांकि उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं रहती है, लेकिन जो इसके रेजिड्यूज होते हैं, जो बचा हुआ अवशेष होता है इन उर्वरकों का और पेस्टिसाइड का, वो धीरे धीरे बारिश के साथ जमीन के नीचे जाता है और वो भूमिगत जल स्तर को प्रदूषित करता है। तो ये अपने आप में एक गंभीर समस्या है। इसके अलावा वनों का क्षेत्र घटने की वजह से जो भूमि क्षरण, यह
1: जी
0: भी एक बड़ी समस्या है, सॉयल इरोजन जिसे बोलते हैं। इसका असर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देख सकते हैं। पहले हम यहाँ कभी धूल नहीं देखते थे। गर्मी के मौसम में हमारे घरों के अंदर खिड़की दरवाजे बंद रहते हैं, तब भी घरों के अंदर हम देखते हैं कि सुबह सुबह मेज
1: जी
0: के ऊपर जो है धूल की परत जमी हुई है। तो यह एक इशारा है, एक संकेत है कि चीजें बिगड़ रही हैं। एक और वैश्विक चुनौती है एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन, यानी समुद्रों का अम्लीकरण। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है उसका लगभग 30% हिस्सा जो है ये हमारे समुद्र इसको सोखते हैं, और इसके कारण इनके जो पानी में एसिडिटी या अम्लीकरण बढ़ रहा है और यह जैव विविधता के लिए एक भयावह स्थिति है, एक भयानक खतरा है।
1: आप बताएं कि जैव विविधता में लगातार हो रही कमी का क्या असर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ रहा है?
0: बिल्कुल, क्योंकि जो पारिस्थितिकीय संतुलन है, जो बिगेस्ट इकोसिस्टम है, पूरी दुनिया उसमें सम्मिलित है, तो उसमें जीवित घटक, निर्जीव घटक, हम सभी उसके अंग हैं। जीवित घटक जितने भी जीवित प्राणी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु पक्षी और मानव। निर्जीव घटक मिट्टी, जल, वायु। तो अगर इनकी गुणवत्ता खराब होती है तो इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पे पड़ेगा। इसके अलावा हम एक संतुलित जो चक्र है उसका एक हिस्सा है, तो यदि किसी हिस्से को कम या ज्यादा किया जाएगा तो ये जो चक्र है ये असंतुलित होगा, और आज हम उसी असंतुलन की ओर बढ़ रहे हैं। दुनिया आज छठे मास एक्सटिंक्शन की तरफ अग्रसर है, जिसमें ये अनुमान लगाया गया है कि लगभग 500 प्रजातियां ऐसी हैं जो आने वाले 20 वर्षों में विलुप्त होने की कगार पे हैं, और हर एक प्रजाति, चाहे वो पशुओं की हो चाहे वो वनस्पति की हो, उसका अपना एक विशिष्ट स्थान इस इकोसिस्टम में है। तो कोई भी घटक अगर कम होता है तो निश्चित रूप से उसका दुष्प्रभाव हमारे इकोसिस्टम पे पड़ेगा, और ये हम देख रहे हैं।
1: प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग,
0: जी
1: क्योंकि मानव की फितरत रही है
0: हाँ
1: कि वो जरूरत से अधिक संसाधनों का प्रयोग करता है,
0: बिल्कुल
1: तो
0: हाँ।
1: ऐसे में भविष्य में हमें किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है?
0: देखिए, एक तो रिपोर्ट आई थी कि जो फिशिंग है ये पूरी दुनिया में ओवर फिशिंग हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों के खाने पीने की आदतें भी बढ़ रही हैं। पहले जितना खाते थे लोग, आज उनका भोजन ऑलमोस्ट दुगना हो गया है, और उसकी वजह से जो है समुद्र से, नदी नालों से, तालाबों से केकड़े, झींगे, मछलियां, इनका दोहन जो है वो प्राकृतिक रूप से जितना होना चाहिए उससे अधिक हो रहा है, जिससे कि इनका प्रजनन चक्र तो है वो प्रभावित हो रहा है। और अगर ये प्रभावित होगा तो इसका असर ये होगा कि अगर मछलियों की संख्या समुद्र में कम होगी तो इसकी जगह जो है एल्गी वगैरह, जो शैवाल है, ये सब जो चीजें ले लेंगी, और ये संतुलन समुद्र का बिगड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से जो भूमि से निकलने वाला कोयला है और दूसरे खनिज पदार्थ हैं, सीमेंट के लिए जो खुदाई होती है, लाइम स्टोन होते हैं, इनका दुष्प्रभाव हम देख रहे हैं। और हमारे देश के ही कई हिस्सों में जहाँ सीमेंट फैक्ट्री लगाने की बात हो रही थी तो लोग उसके विरोध में उतर रहे हैं कि उसकी वजह से वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, जो जिनसे ये खुदाई की जाएगी, उनको क्षति पहुँच रही है। तो
1: जी
0: ये सारी चीजें हैं और ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हो रहा है। तो हमें जितनी जरूरत है अगर हम उतना ही निकालें तो प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, तो जरूरत है एक संतुलन बना करके चलने की कि हमें जितनी आवश्यक

0: आवश्यकता है उतना ही लें, बाकी भविष्य के लिए छोड़ें, और यदि हो सकता है किसी तरह से तो हम उसमें उसको बढ़ाने के लिए अपना योगदान दें।
1: यानी जो प्राकृतिक संसाधन है उसका बड़ी सूझबूझ के साथ हमें
0: बहुत
1: इस्तेमाल करना
0: बिल्कुल
1: पड़ेगा। और अब वो सवाल जो अक्सर हम कार्यक्रमों में पूछा करते हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता आए कि एक आम व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कदम उठा सकता है।
0: देखिए, अगर मुझे 10 किलोमीटर चलना है तो शुरुआत पहले कदम से होती है। पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज है और उसकी इकाई मैं हूँ, आप हैं, हम सब एक इकाई हैं। शुरुआत इकाई से ही होगी। हम अक्सर हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा कि हम अपने लिए वायु, अपने लिए जल और अपने हिस्से की भूमि, इसको संरक्षित करके इसके लिए हम खुद आत्मनिर्भर हों। जल संरक्षण के लिए हम वर्षा जल का संचय प्लस जो जल हमें प्राप्त है उसका सही ढंग से उपयोग, उसका दुरुपयोग ना हो, इसी प्रकार से बिजली का संरक्षण, साथ ही साथ बिजली पैदावार को हम बढ़ाने के लिए क्या योगदान दे सकते हैं, सोलर पैनल जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और आजकल तो इतनी सब्सिडी है कि ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है, तो ये हुई। दूसरा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये बातें हम पिछले कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसको हमको अपने जीवन का मूल मंत्र बनाना है। और मैं पहले भी श्रोताओं से निवेदन कर चुका हूँ कि जब भी संभव हो, जहाँ भी संभव हो, और यह संभव है, एक पेड़ लगाइए। एक पेड़ लगाने का मतलब हम अपने लिए वायु की गुणवत्ता सुनिश्चित कर रहे हैं। एक पेड़ लगाने का मतलब है कि हम भूमिगत जल स्तर में सुधार की व्यवस्था कर रहे हैं। एक पेड़ लगाने का मतलब है कि हम भूमि कटाव को जो है ये रोक रहे हैं। एक पेड़ लगाने का मतलब है कि हम उस जगह की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। तो हमें इस मामले में जो है आत्मनिर्भर बनना ही होगा। समय है जागने का पर्यावरण के लिए और प्रण लेने के लिए कि जैसा पर्यावरण, जैसी धरती हमें मिली है, हम आने वाली पीढ़ी को इससे बेहतर और इससे अच्छी धरती, इससे अच्छा पर्यावरण दे सके, इस दिशा में हमें काम करना है।
1: तो श्रोताओं, पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां आप केवल भविष्य की चिंता नहीं बल्कि वर्तमान की सच्चाई बन चुकी है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, ये सभी संकेत है कि अब समय आ गया है जागने का और ठोस कदम उठाने का। याद रखिए, प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है लेकिन लालच को नहीं। अगर हम आज से ही छोटे छोटे प्रयास शुरू करें तो हम मिलकर एक स्वच्छ, सुरक्षित और संतुलित पर्यावरण का निर्माण कर सकते हैं। तो भानु प्रताप यादव जी, आज आप कार्यक्रम में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारे श्रोताओं को जानकारी दी है। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैडम।

0: पर्यावरण संबंधी वैश्विक समस्याएं पर्यावरण कार्यक्रम के तहत अभी आप इस विषय पर श्री भानु प्रताप यादव से ली गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट करता थी जयशीला। श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद भी।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक सूचना, क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। सूचना समाप्त हुई।

पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं चोरी चोरी चुपके चुपके इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। बोल समीर के हैं, बधुन बनाई है अनु मलिक ने।

और अब अंत में सुनिए श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाजों में फिल्म चेहरा का ये गीत। धुन बनाई है राम संपत ने।

श्रोताओं, जब तक सांसों में सांस है तब तक प्रयास जारी रखना, ना टूटने देना हौसला कभी, मन में सदा उम्मीद रखना, रास्ते चाहे कठिन क्यों ना हो कदम आगे बढ़ाते रहना, जिंदगी के मुश्किल इम्तिहानों में भी खुद पर भरोसा बनाए रखना। जी हाँ श्रोताओं, इसी विचार के साथ मैं सुनीता आप सबों से विदा लेती हूँ। आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, सुप्रभात। अभी आप गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं।

0: जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
1: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
0: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉक्टर सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
2: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीकास।
3: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्रनाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर

0: ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए ये दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
1: इस संभावित समझौते से हुर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह हुर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने SDRF, NDRF, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
2: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता।
3: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 2400 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष

0: राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और FCRA पर राहत तलाशने की कोशिश। जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर RBI गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर। गवर्नर ने कहा पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती हैं महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, JEE तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है ताकि नशे की गिरफ्त में ना आए युवा। पत्र लिखता है भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मुज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है ईरान को होर्मुज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
0: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इंडियाज एक्स्ट्रॉर्डिनरी पूल ऑफ क्रिएटिव टैलेंट कैन बी लीवरेज टू स्ट्रेंथन नेशंस पोजिशन एज ग्लोबल हब फॉर कॉन्टेंट क्रिएशन। Government extends 10 years of Cabinet Secretary T.V. Somnathan and Union Home Secretary Govind Mohan by 1 year. Students intensify their protest over irregularities in recruitment exams in Jharkhand. Uttarakhand government puts agencies on high alert following warning of heavy rain in the state. New Delhi urges Colombo to cooperate in early release of Indian fishermen detained by Sri Lankan authorities. And India safely moves 60 ships through Strait of Hormuz during Gulf crisis. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has underscored that India has a rich tradition of storytelling and an extraordinary pool of creative talent which can be leveraged to strengthen the nation's position as a global hub for content creation. In a social media post, Mr. Modi informed that he met the co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, in New Delhi. The Prime Minister also noted that during the meeting, they discussed the immense potential of India's media and entertainment sector. Addressing a conference of content creators in New Delhi last year, Mr. Modi called upon them to share India's stories to the world.
1: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत, हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें, हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट

0: श्रोताओं, इस समय आप सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत चंद गजलों का लुत्फ उठा रहे हैं और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं सोनाली राठौर की आवाज में ये गजल।
1: वालिद की मौत के बाद मैंने फलक की बेमुरवती देखी, जमाने के सितम झेले। नहीं नहीं, फलक या जमाने का क्या कसूर, मेरा ही सितारा मनहूस था कि ऐसे आफताब का साया मेरे सर से उठ गया। जो कुछ किया मेरी किस्मत ने किया, अपने ही हाथ के सिवा किसी और का हाथ अपने सर पर ना पाया।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तरानी सुहानी। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं अनजाने में, इस फिल्म के एक गीत से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। गुलशन बावरा के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में तैयार, लीजिए अब सुनिए लहू के दो रंग। इस फिल्म का ये गीत सुरेश वाडकर, साधना सरगम और साथियों की आवाज़ों में बोल समीर के हैं।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के बाकी गाने हम आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: 1 2 3 चेक चेक हेलो चेक। अरे चेक किया क्या तूने? चेक किया क्या?

एक सूचना, क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को

पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने में। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे की आवाजों में फिल्म चांदनी का ये गीत। गीत रचना आनंद बख्शी के हैं व संगीत बत किया है शिव हरि ने।

अब पेश है जा निशलार अख्तर का लिखा एवं जयदेव का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है प्रेम पर्वत।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं यू श्रीनिवास का कर्नाटक शैली में मैंडोलिन वादन, इनके साथ वायलिन पर एसडी श्रीधरन, मृदंगम पर टीके मूर्ति ने संगति की है। तो लीजिए पहले सुनते हैं यू श्रीनिवास का मैंडोलिन पर बजाया राग वसंता, जो तिसरांदे ताल पर निबद्ध है, कृति पुरंदारा दासा की।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
1: 1 2 3 चेक चेक, हेलो चेक। अरे चेक किया क्या तूने? चेक किया क्या?

0: कराने का ना रे। चेक चेक, हेलो चेक। अरे अपना HIV स्टेटस चेक किया क्या?
1: नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोता लीजिए अब सुनिए राग कंबोजी, ताल है आदि कृति त्यागराजा की।

0: श्रोताओं, अभी आप शास्त्र संगीत के कार्यक्रम में यू श्रीनिवास का कर्नाटक शैली में मैंडोलिन वादन सुन रहे थे।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम SMS माई चॉइस।

नमस्कार श्रोताओं, आपके संदेशों में छुपी पसंद और आपकी फरमाइशों के साथ एक बार फिर संगीत का सफर शुरू करते हैं। हमारी पहली फरमाइश से, जिसे भेजा है अनुष्का लिंबू ने बिडनाबा श्री विजयपुरम से, इन्होंने सुनना चाहा है तमाशा फिल्म का गीत, जिसे स्वरबद्ध किया है अलका याग्निक व अरिजीत सिंह ने, बोल है इरशाद कामिल के और धुन ए आर रहमान की।

श्रोताओं, अगला गीत हमें SMS पे भेजा है हर्षा ने कामराज नगर श्री विजयपुरम से। ये श्रोता ने सुनना चाहा है बंटी और बबली फिल्म का गीत सोनू निगम व महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
0: Nexa. तो श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर, जो हमें भेजी है स्वराज दीप से मनीष ने। इन्होंने सुनना चाहा है तेज फिल्म का गीत, जिसे स्वरों से सजाया है राहत फतेह अली खान ने, शब्दों में पिरोया है कुमार ने और धुन साजिद वाजिद की।

श्रोताओं, अभी आप श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत सुन रहे थे। अगला एसएमएस हमें भेजा है सत्यनारायण कुरिल ने राजस्थान से। इन्होंने सुनना चाहा है मोहम्मद इरफान और दर्शन रावल की आवाजों में प्रेम रतन धन पायो फिल्म का गीत।

वन फिल्म का गीत जिसे आवाज़ें दी हैं अलका याग्निक व कुमार सानू ने, बोल है समीर के व धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने। ये गीत सुनना चाहा है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने।

श्रोताओं, अब सुनिए एक आवश्यक सूचना। क्या आपके ज़िले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर ज़िले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने ज़िले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने ज़िले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने ज़िले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, अगला गीत सुनना चाहा है बैंगलोर से श्वेता और सुष्मिता ने। ये श्रोता सुनना चाह रहे हैं साथिया फिल्म का गीत, जिसके गायक कलाकार

श्रोताओं, पल पल दिल के पास फिल्म का गीत सुनना चाहा है अक्षत लाल ने मुंबई से। इस गीत को सुरों में पिरोया है अरिजीत सिंह ने।

एसएमएस पर अगली फरमाइश हमें मिली है कर्नाटका से और इसे भेजा है प्रियांशु लाल ने। ये श्रोता सुनना चाहते हैं हमराज फिल्म का गीत उदित नारायण व अलका याग्निक की आवाजों में।

0: श्रोताओं, अगली फरमाइश हमें भेजी है केरला से श्रीना नायर ने। इन श्रोता ने सुनना चाहा है कयामत फिल्म का गीत, जिसे गाया है कुमार सानू व अलका याग्निक ने।
1: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
2: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ,
1: एक कमबख्त दिल की गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
2: तो भुगतो।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश हमें भेजा है रोहित प्रसाद और उदिता बत्रा ने बैंगलोर से। ये श्रोता सुनना चाहते हैं सिमरन फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। इस गीत की धुन तैयार की है सचिन जिगर ने और शब्द रचनाकार है प्रिया सरैया।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा SMS My Choice कार्यक्रम। जाने से पहले हम आपको बता दें, आप अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं हमारे नंबर पर। नंबर है 9474234000। और अब चाहूंगी इजाज़त, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1344वीं कड़ी।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से कुशल देव पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल संपत्ति है। इसकी रक्षा धन से भी अधिक जरूरी है, क्योंकि बिगड़ी सेहत के आगे दौलत भी हार मान लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम चरौदा बार नवापारा अभारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। केंद्रपाड़ा ओडिशा से हमारे चिरपरिचित श्रोता देशदीप दास जी का संदेश हमें मिला है। और उसके साथ साथ संदेश भेजने वाले हैं कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आगे चलते हैं। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे जी का। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी का। श्रोताओ, आप सबके संदेशों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आज की चर्चा में। तो एक बहुत ही रोचक हमारी चर्चा होने वाली है, आइए करते हैं शुरुआत। श्रोताओ, एक प्रश्न कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि बताइए अजीत जी, आखिरी बार आपने बिना काम के किस दोस्त से कब मुलाकात की? तो मैंने हंसते हुए उत्तर दिया था कि इतना कठिन सवाल ना पूछिए, बड़ी व्यस्त जिंदगी है, बिना काम के भला किसी से मिलने का समय कहाँ। जी हाँ श्रोताओ, यही तो समस्या है। लेकिन एक बात और है, लोग अक्सर कहते हैं हम तो हमेशा जुड़े रहते हैं। जी हाँ, लोगों का कहना भी ठीक है कि वो हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, वास्तविक जिंदगी में शायद नहीं के बराबर। तो श्रोताओ, आइए चलते हैं एक घर पर और देखते हैं एक दृश्य। दृश्य कुछ इस प्रकार से है, आप कल्पना करें, पिताजी मोबाइल पर अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी शॉपिंग ऐप देख रही हैं, बेटा गेम खेल रहा है, बेटी रील बना रही है, और बेचारे बुजुर्ग दादाजी सबको देख रहे हैं कि कोई कम से कम उनसे दो मिनट बात तो कर ले। श्रोताओ, ये काल्पनिक दृश्य था, लेकिन क्या आपने खास बात पर गौर किया कि माता पिता, बेटा बेटी और दादाजी सब एक साथ एक ही घर में हैं, लेकिन उनके बीच में संवाद नहीं हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई समय ही नहीं मिलता। तो श्रोताओ, एक सवाल मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा और आपसे भी कि 3 घंटे सोशल मीडिया के लिए हमें समय कैसे मिल जाता है? और क्रिकेट का मैच तो पूरा पूरा देख ही लेते हैं, लेकिन आपस में 10 मिनट भी बात करने का हमारे पास समय नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज समाज में तनाव भी है और बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है श्रोताओं कि क्या किया जा सकता है। तो चलिए श्रोताओं, आज से ही एक प्रयोग करते हैं। आप पूछेंगे भला वो क्या,

0: तो श्रोताओं, वो प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा कि चलिए आज ही समय निकालकर मोबाइल को आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। आप पूछेंगे फिर क्या करें, तो मैं कहूँगा कि तो शुरुआत करते हैं अपने ही घर से। अपने माता पिता, दादा दादी या बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा समय निकालते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कम से कम आधे घंटे से शुरुआत तो हो ही सकती है। फिर फोन को ऑन करते हैं। आप कहेंगे श्रोताओ, अभी आपने कहा फोन ऑफ करो और अब कहते हैं कि ऑन करते हैं, ये भला कैसी बात है? यही तो बात है श्रोताओ, फोन ऑन करके किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार या प्रियजन को फोन मिलाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। ध्यान रहे, इस समय आपको उनसे बात करनी है जिनसे लंबे समय से बात ही नहीं हुई। आप अपने घर के बुजुर्गों से भी बात कर सकते हैं जिनके शायद कई बार आपको या मुझे समय नहीं मिलता। खासतौर से श्रोताओं, मैं अपने विद्यार्थी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अपने बड़ों से बातचीत का समय जरूर निकालिए। उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विश्वास करें श्रोताओं, जब आप फोन करेंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, और आपको जो खुशी मिलेगी, उसकी तुलना किसी और बात से हो ही नहीं सकती। तो आइए पांच आसान उपाय जानते हैं कि कैसे हम मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रोज कम से कम 20 मिनट परिवार के साथ। दूसरी बात, भोजन के समय मोबाइल को दूर रखें। अक्सर होता यह है कि खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में मोबाइल भी चल रहा होता है। नहीं, ऐसा ना करें, मोबाइल को खाने के समय बिल्कुल दूर रखें। तीसरी बात यह हो सकती है कि सप्ताह में एक दिन किसी रिश्तेदार या मित्र से मिलें या उससे बातचीत करें। और चौथी बात है, महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ छोटी सी सैर या भोजन करने का कार्यक्रम बनाइए। याद रखिए, रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समय देना पड़ता है। जैसे हम रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, उसी तरह। जी, उसी प्रकार रिश्तों की बैटरी को भी प्यार, समय और अपनेपन से चार्ज करना पड़ता है। तो एक काम करें, आज ही अपने किसी को समय दीजिए। डिजिटल दुनिया में रहते हुए भी मानवीय रिश्तों को जिंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आपको हमारी बातचीत जरूर पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ करने को, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी सी कविता लिखें। विषय एक बार फिर से सुन लें, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी कविता लिखें। भेज दीजिए अपना लघु लेख या कविता हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और जी, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं। श्रोताओं, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहां सर्च के लिए विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तकों को डाउनलोड कीजिए। एक और जरूरी सूचना आपको दे दें श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां भी अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं। जी, और इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। श्रोताओं, अब समय है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों का, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम, असम का प्रकृति पर्व बिहू। कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में असम के उल्लास पर्व बिहू के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और इसे मनाए जाने के तरीकों और इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि के बारे भी बताया गया है।
1: May I come in, Mr. Henry?
2: Yes, sure. अंदर आइए, आपका स्वागत है।
1: आपने बुलाया था सर?
2: जी, मैंने आपको बुलाया था। I have a good news for you. आपने असम के डांस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लंदन की ब्रिटिश अकादमी को जो ग्रांट की रिक्वेस्ट भेजी थी वह मंजूर हो गई है। ये रहे पेपर्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
2: ऑल द बेस्ट, असम जाने की तैयारी कीजिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
3: एंजेला का परिवार दिल्ली से था, लेकिन अब बहुत समय पहले से वो सभी लंदन में ही बस गए थे। एंजेला डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मात्री थीं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहां की संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना उनका काम था।

0: से ज्यादा खुशी उनकी बेटी कोमल को हुई, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ भारत जा रही थी। कोमल इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी। वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी धारा प्रवाह बोल लेती है। और आखिर आ ही गया वो दिन असम जाने का। लंदन से दिल्ली होते हुए वे गुवाहाटी पहुंचे। शाम को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निर्धारित कैमरा टीम भी आ चुकी थी। एंजेला ने उन्हें आलेख पढ़कर सुनाया और शूटिंग से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
1: दूसरे दिन वो गुवाहाटी शहर के आसपास कुछ ग्रामीण इलाकों में भी घूमने गए। बाजार हाट फुल्लम गामोसा और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों से पटे हुए थे।
0: फुल्लम गामोसा एक प्रकार का हाथ का बुना हुआ सूती गमछा है, जिसकी किनारी लाल रंग की होती है। असमिया लोग इसे पारंपरिक रूप से सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में बड़ों को भेंट करते हैं।
1: आज कोमल बहुत उत्साहित है। बिहू का त्योहार जो है, ब्रिटिश दूतावास के सौजन्य से एंजेला को आज असम की जानी मानी सांस्कृतिक आयोजन समिति की ओर से विशेष निमंत्रण भेजा गया है। आज के विशेष बिहू कार्यक्रम के दौरान वो विशेष अतिथि भी होंगी और डॉक्यूमेंट्री की निर्मात्री भी। उत्सव चल रहा था।
2: नमस्कार, मैं हूं मृगेन बरुआ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और खास स्वागत है हमारी खास अतिथि एंजेला जी और उनकी बेटी कोमल का। तो सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं बिहू पर्व का एक खास नाटक।
3: आज महाराज ने कुछ खास आदिवासी समूहों को बुलाया है।
1: सुना है वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं।
3: जो भी हो, हमारे महाराज हैं बड़े कला प्रेमी।
4: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: चलो देखते हैं क्या क्या होता है।
4: जी जी चलो चलो देखते हैं।
1: चलो चलो चलो चलो, आओ, आओ। चलो चलो जल्दी चलो।
5: अहोम के महाराज की जय हो।
6: जय हो, जय हो।
5: जैसा कि महाराज ने इच्छा व्यक्त की थी, आज हमारे बीच दिमासा कछारी आदिवासियों का समूह पधारा है अपने पारंपरिक कृषि नृत्य बीशु के साथ।
7: नृत्य प्रस्तुत किया जाए।

0: अद्भुत, अति सुंदर। हम इस नृत्य प्रस्तुति के साक्षी होकर धन्य हुए। महामंत्री
1: जी, आज्ञा महाराज।
0: मेरी आज्ञा से प्रजा में ये संदेश भेज दिया जाए कि आज के बाद से फसलों की कटनी के बाद प्रकृति माता को आभार प्रकट करने के लिए समस्त अहोम राज्य में विशु नृत्य विधिवत किया जाएगा।
2: महाराज की जय।

0: तो साथियों, कैसा लगा आपको ये नाटक? अब दीजिए अपने साथी मृगेन को आज्ञा, लेकिन जाने से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना मत भूलिएगा। आपके लिए हमने खास तौर से रखा है बिहू मिलन कार्यक्रम।
1: बिहू मिलन समारोह चल रहा था और साथ ही साथ एंजेला की टीम शूटिंग में भी लगी हुई थी। अब बारी थी रेडियो साक्षात्कार की। आइए सुनते हैं एंजेला, कोमल और मृगेन का ये वार्तालाप।
2: मृगेन जी, आज का बिहू उत्सव बहुत ही सुंदर था। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। नाटक में आपने अहोम राज्य के बारे में बताया, इस पर थोड़ी जानकारी और दीजिए ना।
0: जी एंजेला जी, अहोम राज्य का काल 1200 सामान्य संवत से

0: 1700 सामान्य संवत तक रहा।
1: अच्छा।
0: माना जाता है कि यही अहोम नाम आगे चलकर असोम कहलाया और कालांतर में असम हो गया। प्राचीन शास्त्रों में असम का उल्लेख प्राग ज्योतिषपुर नाम से किया गया है।
2: मृगेन जी, इस त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा?
0: बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शुरू में इस आदिवासी नृत्य को बिशु नृत्य कहते थे। बाद में यही बिशु नाम बिहू के नाम से जाना जाने लगा।
2: सर, मैंने सुना है कि बिहू साल में 3 बार मनाते हैं।
0: सही सुना है कोमल बिटिया। बिहू खेती से संबंधित त्योहार है।
2: ओह।
0: ये असमिया नए साल में वसंत ऋतु के आगमन से शुरू होता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। इन्हें सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वो धान रोपते हैं और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। यानी ये त्योहार फसल लगने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है।
2: अरे वाह। सर, मैंने सुना है कि इन तीनों अवसरों पर त्योहार के अलग अलग नाम हैं।
0: बिल्कुल ठीक कोमल। ये हैं रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू या बैसाख बिहू भी कहते हैं।
2: ओह।
0: ये वसंत की शुरुआत और नव वर्ष का जश्न है, जिसमें नृत्य और संगीत शामिल होते हैं। दूसरा बिहू है कोंगाली बिहू। ये एक अधिक गंभीर अवसर है, जहां भरपूर फसल के लिए खेतों में दिया जलाकर प्रार्थना की जाती है।
2: अच्छा।
0: तीसरा बिहू भोगाली बिहू कहलाता है, जिसमें खान पान और उत्सव होते हैं।
1: मृगेन जी, आपने तो कोमल के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। अब मेरा भी एक सवाल है।
3: जी।
1: मैं जानना चाहती हूँ कि बिहू शब्द कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ है?
0: एंजेला जी, बिहू शब्द की उत्पत्ति विशु से हुई है।
1: जी।
0: जिसका अर्थ है फसल के मौसम में ईश्वर से आशीर्वाद और समृद्धि मांगना।
1: बहुत सुंदर। मृगेन जी, इतनी रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: आज एंजेला और कोमल लंदन वापस जा रहे हैं। कोमल को अपनी माँ के काम पर गर्व है। उसने ठान लिया है कि वो भी मीडिया कार्यक्रम निर्मात्री बनेगी। जहाज जब बादलों को चीरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा तो कोमल ने आंखें बंद कर ली और खो गई बिहू की सुखद स्मृति में। उसके मस्तिष्क में अब भी थी बिहू के सुंदर गीतों की गूंज।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की संरक्षा में ही हमारी सुरक्षा और खुशहाल जीवन का आधार है।
2: खुशी, खुशी जब पैदा हुई तो उसने अपने सारे घर में खुशियां बिखेर दी। वो बचपन में इतना हंसती और इतना खुश रहती कि घर वालों ने उसका नाम ही खुशी रख दिया। उसको खेलने के लिए खिलौनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके खिलौने थे चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की कलकल कर बहने की आवाज। उसका खिलौना मानो पूरी प्रकृति थी।
3: कितने सुंदर फूल हैं और पेड़ भी तो देखो कितने अच्छे हैं। देखो कितनी सारी तितलियां उड़ रही हैं, मुझे तो इन्हें देख के बहुत मजा आ रहा है। अरे चिड़िया तो अपने बच्चों को दाना खिला रही है। वाओ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इन सबको देख के। अरे यहाँ तो भवरा भी है। अरे तोता कहाँ जा रहा है, कितना प्यारा।

0: जैसे जैसे खुशी बड़ी हो रही थी और समय निकल रहा था, खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी। आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां गई खुशी की खुशी?
1: खुशी के पापा, पता ही नहीं क्या हो गया है हमारी खुशी बिटिया को। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, आजकल बहुत परेशान सी रहती है।
2: कमजोर भी हो गई है,
1: कुछ खाती पीती भी तो नहीं है, कमजोर तो लगेगी ही।
2: ठीक कह रही हो तुम, पहले तो खुशी हरदम चहचहाती रहती थी, लेकिन अब तो कल मैं बाजार से उसके लिए गुड़िया भी लाया था, मिठाई भी लाया था, लेकिन वो अब किसी भी सामान से खुश नहीं है।
1: समझ ही नहीं आता है क्या हो गया है इसे।
2: सही कहती हो तुम, जरूर किसी की नजर लगी है मेरी खुशी को।

0: अरे हमारी बिटिया कहाँ है? अरे खुशी बिटिया कहाँ है भाई?
1: अरे भैया
2: नमस्ते नमस्ते मोहन।
0: अरे भाई हमारी खुशी बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई?
2: खुशी बेटे
1: खुशी इधर आओ।
3: नमस्ते मामा जी।
0: अरे जीते रहो बेटी जीते रहो, शाबाश
2: बेटा। मामा जी आए हैं, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या

0: आए हैं।
1: हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया। हाँ। देखोगी? एक मिनट, कहाँ गया मेरा डब्बा? ये रहा। देखो बेटा, ये तुम्हारी मनपसंद रेलगाड़ी है। आई पसंद? और देखो ये भालू, ये डमरू बजाता है। देखो देखो कैसे बजाता है। अरे ये देखो, ये तो भूल ही गया था, कितनी प्यारी सी गुड़िया है, परी की तरह लगती है ना। लो शाबाश। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बिल्कुल खुश नहीं हो। अरे जीजी, आखिर हो क्या गया ऐसे? पहले तो ये ऐसे नहीं थी।
2: पता नहीं भैया, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं इसको लेकर। पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, हमेशा गुमसुम रहती है, परेशान रहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
1: जीजा जी, पिछली बार जब मैं आया तो काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे इतनी कमजोर हो गई है।
3: मोहन जी, हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं।
1: तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते इसे?
3: दिखाया था।
1: तो फिर?
3: वो कहते हैं कि नॉर्मल है।
1: हैं? कमाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में भी सोचेंगे। कोई बात नहीं बेटा। बेटा खुशी, बेटा देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने, तुम एक काम करो, इसे इसे ले लो और अपने कमरे में जाओ।
4: नहीं चाहिए मुझे खिलौने विलौने, मैं जा रही हूं।
1: अरे मगर बेटा ये खिलौने तो ले जाओ। अरे खुशी बेटा, ओफो चली गई बिना खिलौने लिए।
5: आंटी आंटी नमस्ते।
2: नमस्ते बेटा।
5: अंकल नमस्ते।
3: नमस्ते बेटा।
2: खुशी खुशी, देखो ताशु आई है तुमसे मिलने।
5: क्या है मामा?
2: देखो ना ताशु आई है।
5: खुशी खेलोगे मेरे साथ?
4: नहीं ताशु, आज मेरा खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है।
5: क्या हो गया, तुम तो मेरे साथ खेलती भी नहीं हो।
4: नहीं ताशु, मेरा खेलने का मन नहीं है।
5: खेल लो प्लीज।
4: प्लीज ताशु, मुझे नहीं खेलना है।
5: प्लीज।
4: नहीं।
5: ठीक है फिर मैं मोनू के साथ खेल लूंगी।
4: ठीक है जाओ।
6: कुछ दिनों के बाद खुशी के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं जहां शांति थी। अगले दिन खुशी की आंखें नए शहर में खुलती हैं। सुबह सुबह जैसे ही खुशी के कानों में कोयल की आवाज आती है वो खुश हो जाती है। कोयल की आवाज सुनने भर से ही खुशी का चेहरा खिल उठता है।
7: वाह चिड़िया, कितनी अच्छी है, तितलियां भी, ये भी बहुत अच्छी हैं, फूल फूल फिर से, वाह, तोते, तितलियां रंग बिरंगी, लाल पीली हरी, वाह कितना अच्छा है नजारा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मम्मी मम्मी,
2: क्या बात है, क्या हुआ खुशी?
7: मैं तो बाहर जा रही हूँ। अरे वहाँ देखो चिड़िया, तोते, अरे सुंदर है।
2: अरे सुन तो,
7: नहीं मैं तो जा रही हूँ।
2: अरे रुक तो सही, कहाँ जा रही है? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है।
3: एक बार देखे तुमने?
2: हाँ।
3: यहाँ हम जब से आए हैं खुशी की खुशी वापस आ गई है, तो वो बहुत खुश रहती है।
2: सही कहते हो आप।
3: हे ईश्वर, हे भगवान, तूने हमारी खुशी वापस लौटा दी।
6: अब खुशी के मम्मी पापा को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि खुशी की खुशी कहाँ चली गई थी। जहाँ वो पहले रहते थे वहां पर हर रोज पेड़ों की कटाई हो रही थी, नई कंपनियां लग रही थी, प्रकृति की खूबसूरती जाने कहाँ चली गई थी। सो खुशी की खुशी भी चली गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप

0: खुशी बनी रहे तो खूब पेड़ लगाइए। वातावरण में खुशी रहेगी तो आपकी खुशी भी बनी रहेगी।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1344वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। तो लीजिए, कार्यक्रम में पहले सुनिए विदेशिया फिल्म से गीत, जिसे गाया है मनाडे गीता दत्ता और कौमुड़ी मजुमदार ने, धुन एस एन त्रिपाठी की, बोल राममूर्ति चतुर्वेदी द्वारा लिखे गए हैं।

जान लेके जान लेके हथेली पे चल बे जमाने से ना डर बे राम।

दरिया में गूंजी है, प्रेम का नारा बजरिया में गूंजी, डार करे बहिया निकर बे जमाने से ना डर बैराम, ना डर बैना डर बैना डर बैराम, ना डर बैराम, जान लेके हो जान लेके।

नहीं तो ठेंगा देखैबे नाही तो ठेंगा देखैबे जमाने से ना डरबे राम ए ना डरबे ना डरबे ना डरबे राम ना डरबे राम जान लेके ओ जान लेके हथेली पे चलबे जमाने

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए हेमंत कुमार की संगीत निर्देशन में साहिब बीबी और गुलाम फिल्म के लिए। गीतादत्त की आवाज़ है, इस गीत को लिखा है शकील पादायुनी ने।

श्रोताओं अब सुनिए एक आवश्यक सूचना। क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले के अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, मनाडे की आवाज में सुनिए नक्श लैलपुरी की रचना, मदन मोहन के संगीत, फिल्म का नाम है दिल की राहें।

श्रोताओं, बरसात की रात फिल्म का गीत सुनिए। मन्ना डे, आशा भोसले, बतीश सुधा मल्होत्रा व साथियों के स्वरों में इस गीत को संगीतबद्ध किया है रोशन ने। बोल हैं साहिर के।

0: श्रोताओं, इसी के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुर केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद परमाणु हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: इसके बाद श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही 11:00 बजे शुरू हुई। इस दौरान मंत्रियों ने सदन के पटल पर कई दस्तावेज रखे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सदस्य अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सकता है, लेकिन ये व्यवस्थित और सार्थक ढंग से होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। मौसम विभाग ने बताया है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश होने की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर घटा है। हालांकि तेज बारिश के कारण भुवनेश्वर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य में फिर से तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास का काम जारी है। प्रशासन ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। आशीष ने पुरुषों के समूह ए में शानदार प्रदर्शन करते हुए 69.87 मीटर थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। महिलाओं के डिस्कस थ्रो में अमानत ने 52.58 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए समूह ए में 6ठा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Lok Sabha has been adjourned till 2 p.m. following opposition ruckus.

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब सुनिए व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं आपके द्वारा व्हाट्सएप पर भेजे गए पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी गीत। हमें व्हाट्सएप करने के लिए नोट कर ले हमारा नंबर है 9474234।

शून्य शून्य और अब प्रस्तुत है आज की पहली खूबसूरत फरमाइश। आज की पहली फरमाइश हमें भेजी है महाराष्ट्र से अविनाश तानगड़े, सुचिता तानगड़े, कल्याणी तानगड़े, शिवानी तानगड़े, सुजिल तानगड़े और सार्थक ने। इन्होंने सुनना चाहा है खुदगर्ज फिल्म का गीत, जिसे गाया है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमें भेजी है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने। ये श्रोता मेरे गांव मेरा देश फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। इस गीत के गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, बोल हैं आनंद बख्शी की और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, उदयपुर राजस्थान से अगली फरमाइश हमें भेजी है सुशील यादव, रेणु यादव, मोहित यादव, नमिता यादव और कार्तिक यादव ने। ये श्रोता सुनना चाहते हैं चिराग फिल्म का गीत। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफ़ी ने, शब्द रचनाकार है मजरू और संगीत निर्देशक है मदन मोहन।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमें मिली है शादीपुर से, जिसे भेजा है शीला कुमारी ने। इन्होंने सुनना चाहा है लता मंगेशकर व उदित नारायण की आवाज़ों में ये गीत। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश हमें भेजी है मच्छी लाइन श्री विजयपुरम से एम के सूर्य प्रकाश ने। ये श्रोता सुनना चाहते हैं मोहब्बते फिल्म का गीत उद्धव और मनोहर शेट्टी की आवाज़ों में।

श्रोताओं, इस गाने के साथ ही समाप्त होता है हमारा व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजे हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है।
2: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
0: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट।
3: झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंद्र मुंडा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जाँच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी आज छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल हैं। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान 2 चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी

0: के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है। न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नीयत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
1: There is actionable recommendation to strengthen India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together for a safe maritime India, a strong maritime India and a विकसित भारत, क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और हम देश के लिए जी रहा हूं और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। That should be the commitment.
0: भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
2: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
3: अब तक 470,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। नगर से इश्फाक शाह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
4: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन

0: से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है। राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गदेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
1: बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है। और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है।
0: इस बीच चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं। पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई में बारिश का पानी घुस गया है जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित पोषित कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धारणीधरन और डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी जानकारी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना है, जिस कारण समुद्र काफी अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को 9 अगस्त तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह तक के मौसम पूर्व अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। यह थी मौसम की जानकारी। अब

0: प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।
1: विविध भारती
2: FM 3 विजयपुरम
3: 100.9 आपका हम सफर।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: श्रोताओं, सुरों और गीतों से सजी
1: श्रोताओं, सुरों और गीतों से सजी हमारी यह नॉन स्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: नॉन स्टॉप म्यूजिक।

FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 3:30 हुए हैं। अब पेश है फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम, यूं ही गाते रहो।

इस कार्यक्रम को सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत करती हूं मैं रचना, आपके अपने कार्यक्रम यूं ही गाते रहो में। श्रोताओं, याद है वो बचपन का ज़माना, छोटी सी बात पर खिलखिलाना, ना कोई फिक्र ना कोई बहाना, बस दोस्तों के संग मस्ती और हर दिन नया तराना। तो चलिए आज फिर उन्हीं दिनों में लौट आते हैं।

दोस्तों, कभी कभी दिल करता है फिर बच्चे बन जाए, छोटी छोटी खुशियों में फिर से मुस्कुराए, ना कोई चिंता हो ना कोई हिसाब, बस दोस्तों का साथ हो और खुशियों के ख्वाब।

श्रोताओं, बचपन के दिन भी क्या खूब थे, छोटी सी खुशी में चेहरे खिलते खूब थे। आज जिम्मेदारियां हैं, कल की फिक्र है, पर दिल में आज भी वही बचपन की तस्वीर है।

दोस्तों, बचपन की आंखों में सपने हजार होते हैं। छोटे छोटे कदम लेकिन इरादे दमदार होते हैं। बस उन्हें उड़ने का थोड़ा आसमान चाहिए और अपनेपन से भरा एक छोटा सा जहान चाहिए।

0: श्रोताओं, कभी पढ़ाई का प्रेशर, कभी सपनों की उड़ान, कभी दोस्तों के साथ तो कभी अपनी अलग पहचान। हर बच्चों की आंखों में एक सपना पलता है, बस कोई उसे समझे, कोई उसे संभाले, ताकि ये नन्हे कदम अपनी मंजिल तक चल सके।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

श्रोताओं, हर बच्चे की अपनी एक अलग कहानी होती है। किसी की आंखों में शरारत तो किसी में रवानी होती है। बचपन को बस समझना है, उसे रोकना नहीं, उसके सपनों को प्यार से संवारना है।

100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम है। दोस्तों, इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजे हैं, अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, श्रावण मास आ गया है। आज का ये हेलो फरमाइश कार्यक्रम हमने श्रावण मास को समर्पित किया है और आपसे कोशिश की है सावन को लेकर कुछ बातें करने की। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। दृश्य मनोरम वर्षा सावन, सलिल पवन संग चूम मगन, धरती कर मादक अवगाहन, हरित धरे परिधान बदन, रमणी तरुणा अटखेल करत, सौंदर्य सुवासित सुबह करे, रमणीक बने रसना निरखत, दिग मानस रंजन सरस करे, रसधार गिरे घिरते बदरा, तन वसन कपोल निढाल करे, मन चंचल भाव भरे बहुधा, सुरभित शर संधान करे। तो ये कविता आप सभी के नाम, और शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार,
1: हम प्रेमपाल गंगवार बोल रहे हैं नवाबगंज बरेली से।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही प्रसिद्ध शहर है बरेली। बरेली की क्या खूबी है बताइए शहर की। बचपन में हमने तो देखा कि बरेली की हमारे पास जो है लकड़ी की बास्केट जिसे कहते हैं वो आया करती थी हमारे घरों में। कहते थे भी बरेली से हम लेकर आए हैं, ये बरेली से लेकर ये ट्रे आए हैं।
1: ये जो बचपन में जब चलना सीखते थे उसको बैलगाड़ी बोलते थे, ये फेमस है। और अभी तो क्या कहते हैं, सावन का महीना चल रहा है तो अभी भोलेनाथ की बरेली से भी जाना जाता है, हमारा नाथ नगरी बरेली।
0: अच्छा, तो आपके बरेली में क्या हो रहा है?

0: Tiketnya mekoes al ngam Church of the Transfiguration nun tahui mene haang hi tahet tin ke. Hoi yang ngetil nga haang yang ngat sin tengamu hik in hurij, hang rong ita kesaat ita kahuk sin rong ti telapu hi ngai yan.
1: श्रोताओं अभी आप निकोबारी कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की चौथी कड़ी।

हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। पिछले दिनों में मुझे बहुत से ऐसे ईमेल्स कॉल्स आए जिसमें लोगों ने लगभग एक जैसे प्रॉब्लम का जिक्र किया है। हम लम्हे प्रोग्राम सुन के बहुत मोटिवेटेड है, कुछ करने के ठानी है, करना शुरू भी करते हैं, पर कुछ दिनों बाद में दोबारा पहले जैसा हो जाता है। मेरा सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई डिसाइड करता है कि इंग्लिश बोलना सीख के रहेगा, पर कुछ ही दिनों में उसका जोश ठंडा पड़ जाता है। कोई रोज 10 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल बनाता है, पर 10 दिन भी उस पर नहीं चल पाता है। कोई अपने ब्लॉग पर काम करना शुरू करते हैं, कोई एक्सरसाइज करने की ठान लेते हैं, कोई अलग अलग रेजोल्यूशंस बनाते हैं, पर टिक नहीं पाते। हो सकता है आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा। आई थिंक ये बहुत नेचुरल है, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। फॉर इंस्टेंस, एक बार जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं अपने हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गया। ठीक होने के बाद रोज़ सुबह उठकर एक्सरसाइज करने लगा, बट देन ये सब कुछ दिन चला और वापस मैं पहले के जैसा आ गया और पिछले वाली रूटीन पे आ गया। तो सवाल उठता है कि अगर हम कुछ अच्छा शुरू करते हैं तो उस पर कैसे टिके रहे, कैसा अपना मोमेंटम बनाए रखे, कैसे अपने काम को अंजाम तक पहुंचाए। सबसे पहली चीज़, काम तभी शुरू करें जब आप उसके लिए बहुत स्ट्रांगली फील करते हो। दूसरों को देखकर या कुछ पढ़ के मोटिवेट होकर अगर आप कुछ शुरू करते हैं तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी आप जल्द ही उसे छोड़ देंगे। अपनी लाइफ और अपने गोल्स को अलाइन करिए। बहुत सोच विचार करके ही कुछ काम शुरू कीजिए, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का काम हो या फिर बिजनेस स्टार्टअप करने का। शुरू करने से पहले उसके बारे में खूब सोचिए, पढ़िए। क्या यह वाकई आपके लिए ज़रूरी है, आपके इंटरेस्ट का है? ना किया तो क्या, किया तो क्या? जब अंत अंत तक लगे कि हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, तभी वो काम शुरू करिए और शुरू करने के बाद उस पर पूरी तरह से फोकस रहिए। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039।

0: I repeat, 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com.
1: Now dear friends, let's talk about motivation. मेरी समझ से मोटिवेशन माइंड की एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम खुद को किसी काम को करने के लिए बहुत चार्ज्ड अप महसूस करते हैं। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि यह महज दिमाग की एक स्थिति है। एक ही इंसान बिल्कुल एक जैसा परिस्थिति में मोटिवेटेड भी फील कर सकता है और डीमोटिवेटेड भी। यानी मोटिवेशन इज ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर हमें मोटिवेटेड रहना है तो इंटेंशनली हमें अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना होगा, अपने थॉट्स को पढ़ना और कंट्रोल करना होगा। खुद को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए मैं अपने आप को खुद को पॉजिटिव बनाने के लिए एक लम्हे प्रोग्राम लिखा था, कैसा रखना है खुद को अपने आप को पॉजिटिव और पॉजिटिव फीलिंग्स के बारे में, और वो प्रोग्राम आपने सुना भी है। मोटिवेटेड होकर काम करने पर हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब हम उतने ही समय में अधिक काम कर पाते हैं। पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि अगर काम ज़रूरी हो तो हम डीमोटिवेटेड स्टेट में भी उसे कर सकते हैं, भले हमारी एफिशिएंसी थोड़ी बहुत कम हो जाए। इनफैक्ट ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ इसी स्टेट में काम करते हैं। तो जब हम डीमोटिवेटेड रहकर दूसरों के लिए काम कर सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं। जब आपने डिसाइड कर ही लिया कि आपको ये काम करना है तो इसका मतलब आपको ये काम करना ही है। अब काम का होना इस बात पर नहीं डिपेंड करता कि एट द मोमेंट आप मोटिवेटेड है या डीमोटिवेटेड। मैं लम्हे के लिए कई प्रोग्राम्स लिख चुका हूँ दोस्तों, जिसमें हजारों कोट्स के ट्रांसलेशन भी शामिल है। व्हाट डू यू थिंक, मैं हमेशा चार्ज्ड अप और हाईली मोटिवेटेड होकर ही काम करता हूँ? नो, मेनी अ टाइम्स इट बिकम्स बोरिंग एंड टीडियस, स्पेशली ट्रांसलेशन का काम। लेकिन तब भी मैं काम करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ये करना मेरे लिए और मेरे प्यारे श्रोताओं यानी आपके लिए ज़रूरी है। इसीलिए कभी डीमोटिवेटेड होने का एक्सक्यूज मत दीजिए। काम करना है तो करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन।
0: दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com.
1: फ्रेंड्स, आपने ध्यान दिया है कि ऐसा कब होता है कि हम डिमोटिवेटेड स्टेट में भी काम कर ले जाते हैं। हम ऐसा तब कर पाते हैं जब काम करने की अर्जेंसी होती है। पूरे साल मस्ती चलती है पर एग्जाम आता है तो पढ़ाई हो जाती है। कभी सुबह नहीं उठ पाते हैं पर जब ट्रेन पकड़नी होती है तो नींद खुल जाती है। काम का होना तब पॉसिबल हो जाता है तब हमारे अंदर ऐसा करने की अर्जेंसी आ जाती है। व्हाट इज दिस अर्जेंसी, ये अर्जेंसी है क्या? अर्जेंसी दरअसल एक तरह का डर है। न पढ़ने पर फेल होने का डर, न उठने पर ट्रेन छूटने का डर। डर भी एक तरह की इमोशन है जो हमेशा बुरी नहीं होती, यह हमसे ज़रूर काम करा ले जाती है। तो इसका मतलब हम जो अचीव करना चाहिए, अपने अंदर जो चेंजेस लाना चाहते हैं, वो तब तेज़ी से आ पाएंगे जब हमारे अंदर उसे लेने की अर्जेंसी आ जाए, या यूँ कहे उसके ना होने पर किसी लॉस का डर आ जाए। पर प्रॉब्लम यह है कि हम जो करना चाहते हैं उसका न होने पर हमें किसी तरह का डर नहीं दिखता। शायद हम सबकॉन्शियसली सोचते हैं कि ये तो हमारे बनाए गोल्स हैं, इसे नहीं अचीव किया तो क्या, कोई हमसे हिसाब करना थोड़ी आएगा। और नहीं, हम अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं। आप ऐसा मत करिए। मैं नहीं जानता आप किस चीज़ से डरते हैं, पर मैं भीड़ बनने से डरता हूँ। क्या आपने कभी अपने आसपास की भीड़ पर ध्यान दिया? स्टेशन से निकलते वक्त, ऑफिस जाते हुए हजारों लोग सड़कों पर चींटियों की तरह चल जा रहे हैं। पता नहीं इस भीड़ को देखकर आप क्या सोचते होंगे, पर मैं अक्सर यही सोचता हूँ कि इसे अलग कैसे हूँ, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो मुझे खास बनाता है, ये मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मुझे खास बना दे। अगर मैं भी औरों की तरह विदाउट इमोशन अगर वर्क करता हूँ, रोजी रोटी के चक्कर में ही अपने लाइफ बिताता हूँ, तो मेरी अपनी नज़र में मेरे लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होगी। मुझे कुछ खास करना है, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो मेरा ही नहीं करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दे। और ऐसा करने के लिए मेरे पास इन्फिनिट टाइम नहीं है, मुझे तो इस छोटी सी लाइफ में ही बहुत कुछ करना है। मैं किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं

का इंतज़ार नहीं कर सकता कि कोई बाहर से आए और मुझे मोटिवेट करे, क्योंकि जो भी बाहर से आता है उसका भी मोटिवेशन एक हद तक ठीक रहता है, बाद में उसका भी खुद का काम होता है, वो निकल जाता है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी कुछ ढूंढना हो तो बाहर मत ढूंढिए। इसीलिए एक कहावत है, द पैराडाइज लाइज विद इन। हाँ जी, जो भी आपको चाहिए अपने में ही है। जो ऊर्जा, जो शक्ति आपको मिलना है अंदरूनी है, उसे जगाइए और अपनी मंजिल तक पहुंचाइए। विद दिस लवली इन्फॉर्मेशन, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ फॉर द मोमेंट। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात।

0: ऊर्जा जो शक्ति आपको मिलना है अंदरूनी है, उसे जगाइए और अपनी मंजिल तक पहुंचाइए। विद दिस लवली इंफॉर्मेशन, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ फॉर द मोमेंट। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की चौथी कड़ी सुन रहे थे।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम, अब से कुछ देर बाद यानी 4:45 पर सुनिए कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल में कृषि कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:00, 5:30 पर। बांग्ला में होगा कार्यक्रम चिरंतनी। संध्या 6:00 किसान वाणी में माया बंदर की जयलक्ष्मी से बातचीत की जाएगी। विषय रहेगा कृषि कार्यों से आजीविका। रश्मि शर्मा द्वारा लिखित एवं मोहम्मद सलीम राही द्वारा निर्देशित नाटक एक किरण रोशनी की आप सुन पाएंगे 6:30 पर। मौसम की जानकारी, जलियाना को यात्रा कार्यक्रम एवं जन सूचनाएं दी जाएंगी 7:15 पर। दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम का समय रहेगा 7:20। 7:30 पर युवाणी में होगा पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार। चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:15 पर। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात होगा कार्यक्रम गौरवगान। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 8:00 संसद समीक्षा, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड, 9:45 पर इनसाइट्स और रात 10:00 क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में भैरवी काले से मराठी लोकगीत और सुखविंदर सिंह से पंजाबी लोकगीत आप सुन पाएंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जबकि रात्रि 10:00 FM 100.9 MHz पर आप सुन सकेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। और अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात होगा भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। 5:55 पर एग्री टिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा भूमि समतल करने के फायदे। जलयानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत कराएंगे 6:10 पर। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम देश शीर्षक पर केंद्रित होगा। रामचरितमानस गान की 324वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:30 पर। गांधी चर्चा कार्यक्रम की 6ठी कड़ी सुनिए 6:40 पर। 6:50 पर बताया जाएगा मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण। सवेरे 7:00 सुनिए जन सूचनाएं। 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी। जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन सकेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर आनंद लीजिए गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30

मिनट पर फनकार होंगे तलत अजीज, रूप कुमार राठौर, ए हरिहरन और फरीदा खानम। फिल्मी गीतों का लुत्फ लीजिए सुबह 9 बजे तराने सुहाने कार्यक्रम में। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में वसुंधरा कोमकली का कर्नाटक शैली में गायन प्रसारित किया जाएगा। विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर की रिकॉर्डिंग सुनवाई जाएगी सुबह 10 बजे। दिन के 11 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1345वीं कड़ी। निकोबारी कार्यक्रम में 11:30 पर सुनिए लोकगीत। तेलुगु कार्यक्रम का लुत्फ लीजिए दोपहर 12 बजे। 12:30 पर मलयालम में आप सुनेंगे स्वास्थ्य कार्यक्रम। दोपहर 1:10 पर महफिल कवाली कार्यक्रम में कव्वाल होंगे अर्शी बेगम, यूसुफ आजाद और महेंद्र कपूर। आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम सुनिए 1:30 पर। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 8 बजे संसद समीक्षा, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर करंट अफेयर्स तथा रात 10 बजे संसद में हुए प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जबकि रात्रि 10 बजे FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विविद भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:45 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आशा भोसले के गाए लोफर फिल्म के इस गीत से, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए डॉन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, गीत रचना अनजान की।

अब एक सूचना, क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पोस्टकार्ड अपलोड कर कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की? अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाएं। सूचना समाप्त हुई।

मेरा गांव मेरा देश फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। बोल आनंद बख्शी के धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, अभी आप तमिल कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। अब पेश है बांग्ला कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र থেকে শুরু করছি আজকের বাংলা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভ 438.6 মিটার অর্থাৎ 684 কিলো হার্টজ থেকে।

0: श्रोताओं, अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के ठीक 6 बजे हैं। अब किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे, किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहनों और भाइयों को हमारा नमस्कार। और साथियों, आप सभी का आज के हमारे इस अंक में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। किसान साथियों, आस्था, प्रार्थना और दुआ तीनों ही अदृश्य हैं, लेकिन ये असंभव को संभव बना देती हैं। बहुत खूब बात, बेहद खूबसूरत सा विचार जो जीवन की सच्चाई को बयां कर रहा है। और इसी विचार के सहारे अब हम कार्यक्रम का आगाज करते हुए आप लोगों से पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। साथियों, आज आपको बताना है कि बीजू नारियलों के चुनाव का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। भाइयों, प्रश्न हम एक बार फिर दोहरा देते हैं। किसान साथियों, आज आपको बताना है कि बीजू नारियलों के चुनाव का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहें, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस प्रश्न का सही जवाब आपको अवश्य ही बताएंगे। साथियों, जैविक खाद ऐसी प्राकृतिक खाद है जो पौधों, पशुओं और अन्य जैविक अवशेषों के अपघटन से तैयार की जाती है। ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, उसकी संरचना सुधारने और फसलों की गुणवत्ता तथा उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के समय में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, इसलिए जैविक खाद का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। जैविक खाद कई प्रकार की होती है, जिसमें गोबर की सड़ी हुई खाद यानी FYM सबसे सामान्य और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली खाद है। कंपोस्ट खाद फसल अवशेषों, पत्तियों, रसोई की जैविक कचरे इत्यादि से तैयार की जाती है। वर्मी कंपोस्ट कैचुए की सहायता से तैयार की जाने वाली उच्च गुणवत्ता वाली खाद है। हरी खाद यानी ग्रीन मैन्योर डैचा, सनमूंग जैसी फसलों को खेत से पलटकर तैयार की जाती है। इसके साथ नीम की खली, सरसों की खली और अन्य जैविक अवशेष पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत माने जाते हैं। जैविक खाद से कई तरह के लाभ जो हैं वो प्राप्त होते हैं, जैसे मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ती है, मिट्टी जल धारण क्षमता में सुधार करती है, लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है और पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश सहित सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। और इसके साथ ही मिट्टी की संरचना को ये भुरभुरा करती है, जिससे जड़ों का विकास बेहतर होता है और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता भी कम होती है। पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है जैविक खाद और भूमि की दीर्घकालीन उर्वरता को बनाए रखती है। साथियों, जैविक खाद का सही उपयोग इस तरह से करें कि खेतों में हमेशा अच्छी तरह से सड़ी हुई जैविक खाद का ही प्रयोग करें और इसे बुआई और रुपाई से 15 से 20 दिन पहले ही खेत में मिलाएं। सामान्यतः 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी खाद का उपयोग लाभकारी माना जाता है। फसल एवं मिट्टी की स्थिति के अनुसार मात्रा बदल भी सकती है। वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग सामान्यतः 2 से 5 टन प्रति

0: प्रति हेक्टेयर किया जाता है। मिट्टी परीक्षण के आधार पर खाद की मात्रा तय करना सबसे उपयुक्त रहता है। किसानों को जैविक खाद के उपयोग के संदर्भ में ये सलाह दी जाती है कि फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनसे कंपोस्ट तैयार करें, गोबर और कृषि अपशिष्ट का वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करें, जैविक खाद के साथ जैव उर्वरकों जैसे राइजोबियम एजेक्टोबेटर और पीएलबी का उपयोग करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। संतुलित पोषण के लिए आवश्यकता अनुसार जैविक और रासायनिक उर्वरकों का समन्वित उपयोग करें। अतः साथियों, जैविक खाद केवल फसल उत्पादन बढ़ाने का साधन नहीं बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कृषि का आधार है। यदि किसान नियमित रूप से जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो मिट्टी उत्पादकता लंबे समय तक बनी रहती है। इससे उत्पादन की गुणवत्ता सुधरती है और खेती अधिक लाभकारी एवं टिकाऊ बनती है। किसान भाइयों, अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं टोगापुर माया बंदर की रहने वाली श्रीमती जय लक्ष्मी जी से, और इनके साथ आज बातचीत का विषय रहेगा कृषि कार्यों से आत्मनिर्भरता। तो चलिए साथियों, करते हैं इनसे मुलाकात और जानते हैं कि ये कृषि कार्यों को आजीविका के रूप में अपनाकर किस तरह से लाभान्वित हो रही हैं। जय लक्ष्मी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते मैडम।
0: अपने बारे में बताइए कि आप क्या क्या करती हैं?
1: हम फ्रूट वगैरह लगाती हैं, सब्जी लगाती हैं, बकरी मुर्गी पालन करती हूँ, घर में पालती हूँ।
0: आपके घर में कितनी जगह है?
1: 1000 स्क्वायर मीटर जमीन है हमारे पास
0: जी।
1: हाँ,
0: तो आपके पास तो बहुत पर्याप्त जमीन है। तो जय लक्ष्मी जी, जैसा कि आपने बताया कि आप सब्जी, फल और पशुपालन में बकरी पालन और मुर्गी पालन का काम करती हैं, और इन सभी कामों से आपको जो आय मिलती है उसी से आपका परिवार चलता है। तो हम सिलसिलेवार तरीके से आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फलों और सब्जियों के बारे में। इस समय आपके खेत में कौन कौन से फल हैं?
1: अभी तो केला है और बनारस है
0: जी,
1: अनारस है, अभी इस सीजन में कटहल है, थोड़े मेरे सीजन तो ऑफ हो रहा है
0: जी। अगर हम बात करें कटहल की, कितने पेड़ होंगे कटहल के आपके पास?
1: 6 वैरायटी भी अलग अलग है मैडम।
0: अच्छा, बताइए हाँ, जरा उनके बारे में।
1: उसमें बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा साइज बड़ा होता है, थोड़ा छोटा होता है, मीठा होता है, तो सब्जी के लिए भी
0: यूज, सब्जी के लिए हो जाता है, और कुछ जो पक जाते होंगे वो फल की तरह यूज करते हैं।
1: हम लोग खाने में यूज करते, फिर उसके बाद हम लोग बाजार में दे देते हैं
0: जी
1: बेचने के लिए।
0: तो जब वो फल तैयार हो जाता है तो उसके बाद जो उसको लेने वाले हैं, बाजार तक पहुंचाने वाले लोग आपके घर आ जाते हैं या आपको जाना पड़ता है?
1: नहीं, आते हैं मैडम,
0: आपके घर आते हैं,
1: घर में आते हैं,
0: घर से ही ले जाते हैं। तो भाव उसका क्या देते हैं, भाव कैसे लगाते, पैसे ठीक मिलते हैं?
1: हाँ, पैसे तो ठीक मिलते हैं मैडम,
0: मिल जाते हैं।
1: हाँ, मिल जाते।
0: इसके अलावा आपने केले का जिक्र किया, केले के कितने पेड़ हैं?
1: केले के है 50, उसमें भी अलग अलग वैरायटी,
0: अलग अलग वैरायटी के 50 पेड़ हैं, 50 पेड़ हैं,
1: 50 पेड़ हैं।
0: तो अभी केले के पेड़ की क्या स्थिति है, केले में फल है?
1: हाँ, केले में तो 12 मंथ्स फल होता है
0: जी।
1: हाँ,
0: अभी तैयार है क्या खेत में?
1: हाँ, तैयार है मैडम।
0: तो पके तैयार है या कच्चे? क्योंकि केला भी एक ऐसा फल भी है और सब्जी के रूप में भी इसको बहुत ज्यादा मतलब प्रचलित है। तो अभी केले की क्या स्थिति है, वो कच्चा है या पका हुआ है?
1: अभी पकने वाले हैं।
0: पकने वाले हैं, तो मतलब वो आप फल के रूप में ही बेचोगे बाजार में?
1: फल के, फिर सब्जी केला अलग है,
0: अलग है।
1: हाँ, खाने के लिए यूज।
0: अच्छा अच्छा, आपने बताया कि केले और कटहल जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं अभी बगीचे में, और उनकी बस तुड़ाई आपको करनी है।
1: हाँ।
0: लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी कीड़ों का प्रकोप हो जाता है एकदम, मतलब जब फसल पूरी बन के तैयार हो जाती है उस टाइम पे ही। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप क्या करती हैं?
1: हम लोग उसमें जैसे कीड़े नहीं लगने के लिए नीम का पत्ता का पाउडर बना के छींटते हैं।
0: मतलब वो पहले से ही डाल देते हैं?
1: हाँ, फूल लगने के टाइम में, फिर जैसा हम लोग को दिखता है सीजन वाइज कीड़े आ रहे हैं, तो उस समय चींटी से बचाने के लिए
0: जी
1: हाँ हम लोग वो सब चीज का प्रयोग करते हैं, जैसा हल्दी है
0: जी,
1: नीम का पत्ता है, सुखा के पाउडर बना के पानी में मिला के छिड़कना, वैसे ही हम लोग पेड़ के फल को बचाते हैं।
0: तो इससे काबू हो जाता है क्या?
1: हाँ, कुछ हद तक काबू हो जाता है, देखना पड़ता है।
0: लेकिन है ना, कभी आपका नुकसान हुआ है क्या?
1: नुकसान तो
0: कीड़ों की वजह से
1: नहीं होता है, पर चींटी वगैरह फ्रूट को नोचते हैं
0: तो वो बेकार हो जाता होगा।
1: हाँ,
0: वो
1: वेस्ट
0: फ्रूट
1: हो जाता है, तो हम लोग पहले तोड़ के सब्जी खाने के लिए यूज कर लेते हैं
0: जी।
1: हाँ,
0: तो इस तरह से कितने फल जो है वो वेस्ट हो जाते होंगे टोटल में से?
1: वेस्ट होते हैं मैडम पता नहीं होता है, पर हम लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जो बड़ा हो जाता है, थोड़ा खाने जैसा होता है, हम लोग को लग रहा है सूख रहा है, छोटा है, तो हम लोग तोड़ के सब्जी खाने के लिए

0: अपने
1: कर
0: घर के
1: लेते,
0: यूज में आप
1: यूज
0: निकाल देते हैं उसको।
1: हाँ, कच्चे वाले आम
0: हाँ
1: अगर पकने से हम लोगों को खराब हो रहा है, कीड़े लग रहे हैं, तो हम लोग पहले कच्चा वाला आम तुड़वा के दे देते हैं बाजार में, नहीं तो हम लोग अपना यूज करने के लिए, अचार वगैरह बनाने के लिए।
0: आम की क्या स्थिति है आपके बगीचे में इस समय?
1: आम की तो अभी सीजन खत्म होने वाला है,
0: जी
1: अभी बड़े वाले आम है ग्रीन कलर का जो होता है
0: जी
1: उसका अभी सीजन चलता है, उनमें तो ज्यादा कीड़े नहीं लगते हैं।
0: जी
1: छिलका उनका मोटा होता है करके, अभी वो सीजन में वही पकता है।
0: जी तो आप ये सब जो है, ये माया बंदर जो बाजार है, सब्जी मंडी है, वहीं तक पे ले जाती हैं या आपके
1: हाँ
0: यहाँ पोर्ट ब्लेयर तक भी आता है?
1: नहीं, बाजार में ही वहाँ पे लेने के लिए आते हैं, हम लोग लेके जाके भी दे देते हैं,
0: जी
1: उस लोग अपना अगर बेचते हैं, उन लोग लेके आना चाहते हैं तो फोर व्हीलर भी लेके आते हैं।
0: पोर्ट ब्लेयर भी लेके आते हैं। तो अब हम जानना चाहेंगे कि इन फलों के अलावा और भी कुछ आपने उगाया है,
1: हाँ सब्जी
0: सब्जी की
1: लगाए हैं।
0: खेती है, जो सब्जियों
1: हाँ
0: में कौन कौन सी सब्जियां हैं?
1: अभी तो लोबिया,
0: जी
1: भिंडी, बैगन, करेला।
0: काफी सब्जियां हैं आपके पास।
1: हाँ
0: तो हम बात करते हैं बैंगन की। बैंगन जो सब्जी है ये बहुत प्रचलित सब्जी है और इसके बाजार में दाम जो है ये हमेशा ही पूरे साल काफी हाई रहते
1: हाई
0: हैं,
1: रहते।
0: है ना? लेकिन बैंगन की जो खेती है इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसमें कीड़ों का जो प्रकोप है ये दूसरी सब्जियों से सबसे ज्यादा होता
1: ज्यादा
0: है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है आपके, कभी आपने अपने खेत में कीड़े देखे बैंगन की खेती में?
1: हाँ, बैगन में हमेशा हमें मेडिसिन डालना होता है,
0: जी
1: जैसे घर में हम लोग हल्दी, हरी मिर्च सब पाउडर करके, नीम का पत्ता हम लोग को जैसा 3 मंथ्स में छीटना होता है,
0: जी
1: पानी में मिला मिला के हम लोग को छीट के डालना होता है, घर के जैविक खाद सब मिला के उसमें कीड़े को मारने के लिए डालना होता है।
0: तो आप उस तरह से डालते हैं तो ये क्या इससे मतलब जो कीड़े की प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है या एकदम खत्म हो जाती है?
1: नहीं कम हो जाता है पर
0: खत्म नहीं
1: खत्म
0: होता
1: नहीं
0: है।
1: होता है,
0: फिर
1: फिर
0: ऐसी स्थिति में आप क्या करती हैं इसे?
1: कैरी से मेडिसिन ला के पौधों में पानी में मिला के छिड़कते हैं
0: वो
1: मैम।
0: तो कीटनाशक हुए, रासायनिक कीटनाशक,
1: हाँ
0: तो अंत में आप रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करती हैं
1: करती
0: ताकि
1: है,
0: वो कीड़े जो हैं वो मतलब खत्म हो जाएं
1: खत्म हो
0: और
1: जाए,
0: फसल जो है वो बचाई जा सके।
1: बचाई जा सके।
0: अच्छा, तो इसके अलावा करेले का भी जिक्र आपने किया, करेले में भी यही प्रॉब्लम होती होगी?
1: हाँ करेले में भी आते हैं कीड़े, उनका भी हम कैरी से मेडिसिन लाके पानी में मिला के छिड़कते हैं।
0: अच्छा, अभी आपके खेत में कौन सी सब्जी बिल्कुल तैयार है?
1: अभी बैगन है,
0: एकदम
1: करे
0: तैयार है?
1: हाँ अभी हम बेच रहे, दे रहे हैं, हम लोग
0: हाँ
1: यूज़ भी
0: हाँ
1: कर रहे हैं खाने में, बैगन
0: हाँ
1: है, करेले है,
0: जी
1: बैगन का तो 12 मंथ्स ही रहते हैं, मिर्ची है, हरी मिर्च
0: जी
1: वो भी हमेशा 12 मंथ्स ही मिलते हैं हमें।
0: जी तुड़ाई जब करते हैं खेतों से, आप अकेली करती हैं या आपके घर में कोई और भी हैं लोग
1: हाँ
0: जो खेती में आपके साथ लगे हुए हैं?
1: हस्बैंड है, बेटा है,
0: सब
1: कभी
0: लोग मिलके
1: हाँ
0: करते हैं।
1: करते हैं।
0: तो तुड़ाई करके जब इनका भंडारण किया जाता है, देखिए एकदम से तो मार्केट में नहीं जाती हैं, तो कुछ समय के लिए आप अपने घर में कहीं रखते होंगे, तो वो जगह जहाँ पे आपने सब्जियों को तोड़ के सुरक्षित रखा है वो जगह एकदम सही है, वहाँ पे तो कोई नुकसान नहीं होता सब्जियों का, उसके
1: नहीं
0: कुछ
1: नहीं
0: देर बाद ही आप रखते होंगे, वो
1: हाँ
0: पर्याप्त जगह है आपके पास
1: हाँ
0: सब्जियों का
1: पर्याप्त,
0: भंडारण करने का?
1: हाँ पर्याप्त जगह है।
0: तो
1: हाँ
0: आपको कितनी आय इनसे हो जाती है?
1: हमारा घर इसी से चलते हैं मैडम,
0: पूरी तरह से,
1: पूरी तरह से।
0: पूरी
1: हाँ
0: तरह से आप लोग कृषि पे ही
1: कृषि
0: निर्भर
1: पे ही
0: हैं,
1: निर्भर है। हाँ
0: आप अपने काम से खुश हैं,
1: हाँ खुश है मैडम।
0: घर चलाने में सारी जो इनकम है वो पूरी कृषि से जो होती है वो पर्याप्त है?
1: हाँ पर्याप्त है मैडम, जिससे बच्चा मेरा पढ़ रहा है,
0: जी
1: घर बना है उसी से, सामान वगैरह हम लोग उसी से ही खरीदते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि आपका कोई और काम नहीं है, आप कृषि के से ही जो इनकम
1: हाँ
0: होती है उसी से आप अपना
1: अरे मैं
0: परिवार जो है मतलब चल रहा है।
1: हाँ
0: जैसा कि आपने बताया कि आप करेला, लोबिया, बैंगन और मिर्ची, ये सब्जियां जो हैं ये आपके खेत में ज्यादा होती हैं, तो इनके जो बीज हैं ये आप किस तरह से और कहाँ से लेते हैं?
1: बीज तो हम ही लोग अपने ही पेड़ में सुखाते हैं, उनको सुखा के रखते हैं, डब्बा में बंद करके रखते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ उसी से हम लोग उगाते हैं, हम लोग तो बाजार से नहीं लेते हैं,
0: बीज का खर्चा नहीं होता,
1: नहीं होते
0: यानी
1: हैं नहीं।
0: मिट्टी की उपजाऊपन जो है वो बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए, जिसको कि हम कहते हैं कि मृदा स्वास्थ्य, तो उस पे कभी आपने ध्यान दिया है?
1: हाँ मिट्टी हमेशा हम लोग खुदाई करके, क्लीन करके, घास वगैरह सब साफ करके,
0: जी
1: उसमें खाद तो हम लोग घर के बकरी के, मुर्गी के जो भी वेस्ट रहते हैं
0: जी
1: उसी का हम लोग डाल के खाद बनाते हैं,
0: जी
1: खुदाई करके सारा क्लीन करके हम लोग डाल के छोड़ देते हैं, पत्तियाँ
0: जी
1: घास वगैरह सड़ने के
0: जैविक
1: लिए।
0: तरीके से जो
1: हाँ
0: है ना खाद
1: हाँ
0: बनती है वो आप अपने खेतों में डाल?
1: हमारी खेती में जो भी सब्जियाँ अच्छे
0: जी
1: मात्रा में उगते हैं तो ये हमारी मिट्टी देखने से पता चल रहा है कि
0: इससे
1: उपजाऊ
0: आप
1: जमीन।
0: अंदाजा लगाते हैं कि
1: हाँ
0: मतलब आपकी मिट्टी जो है वो स्वस्थ है।
1: स्वस्थ है।
0: अच्छा, अगर आपकी मिट्टी स्वस्थ होगी तभी

0: अच्छा, फल
1: हाँ तभी
0: उगेगा।
1: फल अच्छा होगा, उसकी मात्रा भी ज्यादा होगी और उसकी क्वालिटी जो है वो भी अच्छी होगी। चलिए अब हम बात करते हैं पशुपालन की। आप पशुपालन में क्या करती हैं?
0: बकरी पालन करती है,
1: कितनी बकरियां हैं आपके पास?
0: बकरी है 20।
1: 20 बकरियां। बकरियों को रखने के लिए भी घर में अलग से शेड वगैरह रखा है
0: हाँ,
1: आपने?
0: छोटी सी झोपड़ी बना के रखी
1: जी
0: है। हाँ, बकरी को गीला में नहीं रखना है।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, इसीलिए उसके स्वास्थ्य के लिए उसे सूखा जगह रखना है, मचान जैसा बना के रखी है।
1: अच्छा। और साथ में उसकी सफाई जो है उस जगह की, वो
0: हाँ
1: आप नियमित रूप से करती होंगी,
0: हाँ डेली सुबह सवेरे साफ करती है सारा, उनका जो भी ये रहता है
1: वेस्ट
0: वेस्ट वाला
1: वगैरह?
0: झाड़ू
1: हाँ
0: लगा के पौधों में डाल देती हूँ,
1: बिल्कुल, वो खाद बन
0: खाद
1: जाती
0: बन
1: है।
0: जाती है। हाँ
1: खाने का इनका क्या इंतजाम है? मतलब आप
0: उन
1: सिर्फ चरने के लिए भेज देते हैं या घर में भी आप
0: हाँ इसे
1: देते
0: हम
1: हैं?
0: गंजी में थोड़ा सा गेहूं बचा वाला चावल खाना जो भी रहते हैं,
1: जी
0: सब्जी वगैरह का वेस्ट छिलका, वो सब मिला के गंजी के साथ सुबह और शाम को देता
1: दो
0: है।
1: टाइम देते
0: हाँ,
1: हैं।
0: और पत्ती वगैरह जैसा जिंदा बली का थोड़ा मोड़ा फूल वगैरह जो भी पत्ती, उनको खाने के लिए काट के बांध के देते हैं।
1: तो उससे पर्याप्त हो जाता है
0: हाँ,
1: उनके लिए।
0: पर्याप्त हो जाता है, चरने
1: हाँ
0: भी जाते हैं।
1: चरने भी जाती हैं। उसके बाद कभी कोई बीमारी वगैरह आपने इनमें देखी?
0: हाँ, कभी कभी होता है साल में एक बार
1: जी
0: ठंडी से ठंड लग जाना,
1: जी
0: तो उनको थोड़ा आग लगा के धुआं देना, फिर उनको सेकना, ये सब करना पड़ता है।
1: काबू में आ जाती है
0: हाँ,
1: बीमारी?
0: नहीं आने से फिर सामने विटनरी को बोलने से आके देख के मेडिसिन या इंजेक्शन लगा के भी जाते हैं।
1: इनमें कोई वैक्सीनेशन कभी दिया गया है आपने अपनी बकरियों
0: हाँ,
1: को?
0: उन लोग आके बोलने से विटनरी वाला लोग आके लगाते हैं।
1: लगा के दे जाते
0: हाँ,
1: हैं। बकरियों से आपको क्या फायदा है?
0: बकरियों से फायदा है, उनका मांस बेचते हैं,
1: जी
0: फिर उनका दूध भी बहुत लोग मेडिसिन के थ्रू से यूज करते हैं, तो वो भी लेने के लिए
1: बिल्कुल
0: लोग आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: हाँ,
1: तो एक बकरा जो है वो कितने तक में बिक जाता होगा?
0: अभी तो हम लोग से तो 8,000 ऐसा सब लेते हैं।
1: अच्छा है।
0: उन लोग मार्केट में अपना मांस काट के बेचते हैं, या तो उन लोग अपने बेचते हैं, हमारे यहाँ से आके इस तरह लेते।
1: बहुत अच्छा है। तो कभी अगर ज़रूरत पड़ जाए अचानक से पैसे की,
0: हाँ
1: तो आप अगर एक बकरा भी बेच देंगे तो आपको
0: हाँ
1: मतलब खड़े
0: खर्चा,
1: पैर जो पैसे का इंतज़ाम है वो आराम से हो जाता
0: हाँ हो
1: होगा,
0: जाते हैं आराम से।
1: है ना?
0: हाँ
1: तो मिला जुला कर पशुपालन और सब्जियों की खेती और फलों से आपको एक अच्छी इनकम जो है वो हो रही है, जिससे कि आपने बताया कि आपका घर परिवार जो है वो उसी से चल रहा है। आप और लोगों को क्या कहना चाहेंगी जिनके पास जमीन है और है ना वो खेती से अभी तक नहीं जुड़े हैं?
0: मैं कहना चाहती हूँ सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो हमारे वेस्ट चीज जो भी है सबको यूज कर सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: फिर अगल बगल थोड़ा बहुत पौधा लगा सकते हैं, जो जगह बचा वाला है उसमें कुछ ना कुछ छोटे से पौधा या कुछ भी लगाना है जो यूटिलाइज कर सकते हैं, जमीन जो भी
1: बिल्कुल
0: वेस्ट बचा वाला है उसमें धीरे धीरे आप लोग कुछ भी जरूरत के सामान जो घर पे हम लोग लगा सकते हैं, जैसे धनिया पत्ती हो, पुदीना हो, थोड़ा मोड़ा साग लगा सकते हैं, उससे आपको अपना इनकम भी हो जाएगा, घर भी चल जाएंगे, किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है,
1: बिल्कुल।
0: जगह का भी यूटिलाइज हो जाएगा।
1: हाँ
0: हाँ,
1: हर तरह से फायदा है
0: फायदा है।
1: जी। बहुत अच्छी बात आपने बोली और आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपने इतनी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैडम।
1: कृषि कार्यों से आत्मनिर्भरता। किसान साथियों, अभी आपने टोगापुर मायाबंदर की रहने वाली श्रीमती जयलक्ष्मी जी से की गई ये बातचीत सुनी। और साथियों, इतनी बातों और जानकारियों के बाद अब मनोरंजन हो जाए तो आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का।

साथियों, गीत आपने सुना, हम उम्मीद करते हैं इसे आपने जरूर पसंद किया होगा। और भाइयों, आप लीजिए ये जानकारी जिसका विषय है मुर्गियों में रानीखेत की बीमारी।

0: किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुर्गी पालन एक बहुत ही अच्छा एवं लाभप्रद व्यवसाय है, जिसे कि आप सह व्यवसाय के रूप में खेती बाड़ी के साथ अपना सकते हैं। इससे जहां आपको अंडे व मांस की प्राप्ति होगी, जो कि पौष्टिकता से भरपूर होते हैं, वहीं इससे अतिरिक्त आय भी मिलती है। मुर्गी पालन से आपकी व आपके परिवार की श्रम शक्ति का भी भरपूर उपयोग होता है। जैसा कि अन्य व्यवसायों के साथ होता है कि सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सफलता के लिए आपको उन कारणों और बचाव के विषय में जानना जरूरी है जो कि असफलता की ओर ले जा सकते हैं। किसान भाइयों, मुर्गी पालन में सफलता के लिए आज हम आपको मुर्गियों की एक भयंकर बीमारी रानीखेत के संदर्भ में जानकारी देंगे। रानीखेत मुर्गियों का एक भयंकर रोग है और कभी कभी इस रोग से 100% मुर्गियों की मृत्यु भी हो जाती है। ये रोग प्रायः सभी उम्र की मुर्गियों में पाया जाता है, परंतु चूजे मुख्यतः इस रोग का शिकार बनते हैं। चूजों में जब ये रोग लग जाता है तो वे बहुत ही सुस्त दिखाई देते हैं, उनके पंख मुड़ जाते हैं और आंखें बंद हो जाती हैं, उनको भूख नहीं लगती तथा सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़ भी निकलती है। साथ ही चूजे मुंह से जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उन्हें बुखार आ जाता है और प्यास बहुत लगती है। इसके साथ साथ उन्हें पीले रंग के दस्त भी लग जाते हैं। प्रायः ऐसे चूजे गर्दन हिलाते नजर आते हैं और रोग बढ़ने से चूजे मरने लगते हैं। इस रोग की मामूली आक्रमण से जो चूजे बच जाते हैं उनके डैनों, टांगों व गर्दन को लकवा मार जाता है और मुर्गियां इस रोग से ठीक हो जाने के बाद स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन वे आमतौर पर अंडे नहीं दे पाती। कभी कभी मुर्गी की गर्दन पीछे की ओर मुड़ जाती है। रोग की भयंकर अवस्था में चूजों में इस बीमारी के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं और वे मरने लगते हैं, लेकिन प्रौढ़ पक्षी प्रायः देर से मरते हैं। किसान भाइयों, ये रोग विषाणुओं के कारण होता है और ये रोग मुर्गी घरों में जंगली चिड़ियों, कबूतरों, नई मुर्गियों, कौओं या देखभाल करने वाले व्यक्तियों के माध्यम से पहुँचता है। झुंड में एक बार रोग के आरंभ हो जाने के बाद ये रोगी पक्षियों की थूक, बीड़ आदि से स्वस्थ पक्षियों में तेजी से फैलता है। इस रोग से मुर्गियों के बचाव का एकमात्र तरीका इसकी रोकथाम का ही है, क्योंकि एक बार इस रोग के लग जाने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है। इस रोग से बचने का एकमात्र इलाज है चूजों को रानीखेत का टीका लगवाना। आप एक दिन के चूजों को RD1 और 8 सप्ताह के चूजों को RD2 का टीका लगवाना ना भूलें। यदि किसी चूजे या पक्षी में कोई असाधारण बात दिखाई पड़े तो उसे तुरंत ही समूह से अलग कर दें और ऐसे पक्षियों को किसी सूखे स्थान पर रख दें। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि स्वस्थ पक्षी उसके संपर्क में ना आए। जिस बाड़े में ये रोग फैला हो उसे कुछ महीनों के लिए खाली छोड़ दें और बाद में कीटाणुनाशक दवाओं की छिड़काव के बाद ही वहां मुर्गियों को रखना शुरू करें और पक्षियों के मरने पर उन्हें दूर गड्ढों में दबा दें। मुर्गियों में रानीखेत की बीमारी के संदर्भ में अभी आपने ये जानकारी हासिल की। और भाइयों, इसी के साथ कार्यक्रम में फिर वक्त हो चला है आपसे आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। तो साथियों, हम आपको बता दें कि आज कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे पूछा था, बीजू नारियलों के चुनाव का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, बीजू नारियल के चुनाव का सबसे अच्छा समय फरवरी से अप्रैल तक का होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने सही उत्तर के माध्यम से ये जानकारी हासिल कर ली होगी। और साथियों, इसी के साथ आज के लिए किसानवाणी की इस संध्या को अब हम यहीं पर देते हैं विराम। अब मुलाकात होगी अगले अंक में कुछ और नई बातों, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए और फिलहाल के लिए शिवानी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था।

0: अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी।
1: अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
5: श्रोताओं, अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है रश्मि शर्मा द्वारा लिखित एवं मोहम्मद सलीम राही द्वारा निर्देशित नाटक एक किरण रोशनी की।

0: कहाँ की तैयारी है माँ? मैं देख रहा हूँ इन दिनों आप और मिताली कुछ ज्यादा ही परेशान है। आए दिन गुपचुप बातें होती रहती है और माँ बेटी के एक कदम घर के बाहर ही रहता है।
1: अरे जाएंगे कहाँ भैया, आजकल हम लोग तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की की तलाश कर रहे हैं।
0: ये उल्टी धारा मेरे ही घर में बह रही है और कहीं? मैंने तो आज तक यही सुना था कि लड़की वाले लड़का तलाश करते हैं।
1: लड़की वाले भी आएंगे, बस आज हम लोग गए और कल लड़की वाले हाजिर। लड़की हम लोगों ने पसंद कर रखी है, बस उन्हें फैसला सुनाने जा रहे हैं।
0: आखिर वो कौन सी लड़की है, कुछ मैं भी तो सुनूं।
1: अरे वो अपनी शशि है ना बेटा, अरे मिताली की सहेली, बड़ी अच्छी लड़की है।
0: माँ, अगर सचमुच आप लोग किसी निर्णय के तहत शशि के घर जा रही हैं तो पहले मेरा निर्णय सुन लीजिए, मुझे शादी नहीं करनी है।
1: मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर शशि में क्या कमी है जो आप तीसरी बार ये बात कह रहे हैं।
0: अगर मुझे पांचवीं, आठवीं या दसवीं बार भी कहनी पड़े तो भी मैं यही बात कहूंगा। अगर मैं तुम्हारे लिए कोई बशक्कल लड़का ढूंढ कर ले आऊं तो तुमसे पहले माँ कहेगी कि मुझे इस लड़के से अपनी बिटिया रानी की शादी नहीं करनी है।
1: तो क्या शशि बदसूरत है? और यदि आपकी नजरों में है भी तो आपकी उस लड़ाई का क्या हुआ जो सुंदर और सुंदर के बीच चला करती थी? आप एक लेखक हैं, आपकी रचनाओं के आधार पर तो मैं यही कह सकती हूँ कि आपके दिल में असुंदर पात्रों के प्रति दया का सागर हिलोड़े लेता रहता है। मुझे आश्चर्य हो रहा है तो सिर्फ इस बात पर कि ये बात वो व्यक्ति कह रहा है जिसकी कहानी को एक पत्रिका ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कहानी घोषित करके छापा था, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उसकी नायिका एक उपेक्षित कुरूप लड़की थी। उस कहानी का बेहतरीन अंत ये था कि एक खूबसूरत लड़के ने उसे अपना कर उसके जीवन को एक नया मोड़ दे दिया था।
0: मीता, वो तो मेरी कल्पना थी।
1: कल्पना कहीं बाहर से नहीं आती विवेक भैया, उसका अभ्युदय मन और मस्तिष्क के किसी कोने से हुआ करता है। एक कृति भले ही 99% झूठ के ताने बाने से बुनी हुई हो, कल्पनाओं के आवरण में लिपटाई गई हो, उसमें 1% सच अवश्य हुआ करता है, और वही सच 99% झूठ का आधार हुआ करता है। मेरी शशि आपकी कहानी की उस नायिका से 99% सुंदर है।
0: माँ, ये मुझसे बार बार बहस क्यों करती है? जब मुझे शशि का चेहरा हद से ज्यादा चौड़ा और भारी दिखाई पड़ता है, मेरी पसंद के दायरे में नहीं आता है, मैं किसी भी प्रकार उससे अपने आप को नहीं जोड़ पाता हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष है?
1: जोड़ने के लिए प्रयास करना पड़ता है बेटे।
0: माँ, गमले में खिलाए गुलाब देख रही हूँ ना, ना चाह कर भी हमारी, तुम्हारी या मिताली की निगाह इस पर ठहर जाती है। उंगलियां प्यार से उसकी पंखड़ियों को सहलाने लगती है। गुलाब कोई प्रयास नहीं करता माँ, चीख चीख कर अपनी ओर बुलाता नहीं है।
1: भैया तुम्हें तो सौंदर्य प्रतियोगिता में एक्सपर्ट बन के जाना चाहिए, सबकी छुट्टी करके रख देते। मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ कि शशि के चेहरे में आकर्षण नहीं है, चौड़ा है, भारी है और न जाने क्या क्या है। गत वर्ष उसे मिस यूनिवर्सिटी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तुमने भी कितनी तारीफ की थी। जिन समाचार पत्रों में खबरें छपी थी, उसकी तस्वीर छपी थी, वो तुम खुद लाए थे। यहाँ तक कि तुमने उसे

0: चाय पर बुलाया था, बधाई दी थी, विशेष रूप से गुलदस्ता भी भेंट किया था। मैंने तुम दोनों की तस्वीर खींची थी, यकीन नहीं आता तो अपने ही कमरे में टंगी तस्वीर को देख लो। अचानक ये सब झूठ कैसे हो गया? और अगर ये झूठ है थी तो क्या ये भी झूठ था कि तुमने एक एक पत्र में उसे शादी का प्रस्ताव रखा था और आज वो पत्र उसके पास नहीं मेरे पास सुरक्षित है।
1: मीता, तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो, तुम जबरदस्ती शादी करना चाहती हो, तो सुन लो, मैं ये शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा।
0: भैया आप शांति से सुन लीजिए, ये शादी होगी होगी होगी। शशि, आज बड़ी सजी संवरी बैठी हो, देखो माँ कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल चांद जैसी। कहाँ की तैयारी है शशि रानी?
2: आओ मिताली। माँ जी प्रणाम, आइए बैठिए, अच्छे मौके से आई हैं आप लोग, लेकिन थोड़ी सी देर हो गई।
0: कोई खास बात?
2: हाँ, अभी कुछ लोग देखने आए थे, चले गए। खैर ये कोई नई बात नहीं है, देखना और अस्वीकार करना आदत बन गई है लोगों की और नियति बन गई है मेरी। पहले दुख होता था, अब तो वो भी नहीं होता।
0: अच्छा ही हुआ बेटी, उन लोगों ने पसंद नहीं किया।
2: जी
0: हाँ, पसंद कर जाते तो मैं क्या करती?
2: मम्मी आपके दिल में मेरे लिए इतना प्यार है, इतनी जगह है, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। ख्वाब बुन नहीं पाती इसलिए खुश नहीं हो पा रही हूँ।
0: शशि ये तुम नहीं, तुम्हारी निराशा बोल रही है। निराशा के बीच आशा की कोई ज्योति जलाने का प्रयास क्यों नहीं करती?
2: ज्योति बहुत हल्की हो, छोटी हो और हवा की झोंकी या कि तूफान का रूप विकराल हो तो उस ज्योति का अर्थ ही क्या रह जाता है?
0: बचाने वाले आंचल से दीपक की लौ बचा लेते हैं तेज अंधड़ में भी, और झोंका गुजर जाने के बाद वही दिया टिमटिमाता हुआ रोशनी बिखेरता है।
2: और कभी कभी इसी प्रयास में आंचल भी तो जल जाता है मम्मी।
0: अच्छा अपना दर्शन बंद करो, हम लोग आज बात पक्की करने आए हैं,
2: और जिसके साथ जिंदगी बितानी है उसे ही पसंद ना आ सकूं तब क्या होगा? मैं आपके घर में अपनी खुशी के लिए कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहती हूँ, उल्लासपूर्ण वातावरण को विषाद में परिवर्तित नहीं करना चाहती हूँ।
0: वो तो हो चुका है बेटी, उसकी चिंता तुम मत करो, मुझे तुम पसंद हो यही मेरे लिए पर्याप्त है। जब घर में कोई लक्ष्मी जैसी बहू आ जाती है ना, तो बर्बाद घर भी बस जाता है। तुम्हें जिन्होंने नापसंद किया वो बदकिस्मत थे, मैं अगर थोड़ी देर पहले आ गई होती तो दो चार खरी खोटी सुनाए बिना उन्हें नहीं जाने देती।
2: ऊपर से कैसी आवाजें आ रही हैं शशि, लगता है रवि भैया और चाचा में कुछ गर्मा गर्मी चल रही है। हाँ वही लोग हैं, हर बार यही होता है, और ये लोग बेवजह घंटों लड़ते झगड़ते रहते हैं।
0: घंटों? अरे मैं अभी शांत किए देती हूँ।
3: मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि आप चुपचाप आराम कीजिए, लेकिन आप है कि कुछ मानने को तैयार नहीं। मेहमान आए नहीं कि ऐन वक्त पर सुलगती हुई बीड़ी हाथ में लिए पहुंच जाते हैं आप।
4: देखो बेटे, आज मेरे पास सब कुछ है, इसका ये मतलब तो नहीं कि रुपए पानी की तरह बहाना शुरू कर दूं। बीड़ी से तुम्हें नफरत है तो मैं उसे पीना छोड़ सकता हूँ, मगर मेहमानों को दिखाने के लिए महंगी सिगरेट पीना मेरे बस का रोग नहीं है।
3: कंजूसी हर जगह नहीं दिखलाई जाती पिताजी।
4: अरे एक एक पाई जोड़ कर खड़ी की है ये इमारत बेटे, मैंने तो लोगों की गाड़ियां धोई है, पोछी है, उनकी रखवाली की है, और आज आज तेरे पास एक नहीं दो दो गाड़ियां।
3: बीते दिनों को भूल जाइए पिताजी, भूल जाइए।
4: कैसे भूल जाऊं बेटे, मैंने वो दिन देखे हैं जब बाबू लोग मेरे स्टैंड पर गाड़ियां खड़ी करके ऑफिस चले जाते थे, रेस्टोरेंट चले जाते थे, या खरीदारी करने के लिए चले जाते थे। जब लौट कर आते थे तो उनकी गाड़ियां पुछी धुली चमाचम मिलती थी, सब अकेला अपने हाथ से करता था। स्टैंड के 9 रुपए देते थे और मुझे मुझे मेरे काम के 20, 25 और 50 तक। बेटे सब कुछ भूल जाना चाहिए, लेकिन बीते हुए दिन, कटी हुई मुसीबत और अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए।
3: पिताजी यही सब कुछ याद रखना आज आड़े आ रहा है, दुनिया बहुत बदल चुकी है, ईमानदारी को लोग बेवकूफी समझते हैं, लोग जिसको जितना बड़ा फरेब देते हैं, धोखा देते हैं, उसी को अपनी उतनी ही बड़ी सफलता समझते हैं। पिताजी

0: मैं शशि की शादी 15 दिन के अंदर कर सकता हूँ। बस बस आपको उतने समय के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा।
1: लोग बेटी की शादी में परदेश से घर आते हैं और मैं अपना घर छोड़कर चला जाऊं।
0: सदमा पहुंचा पिताजी, इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आपकी उस एक बात से मैं तंग आ चुका हूँ जिसे आप रटी रटाई जुबान में विदा होकर जाते जाते मेहमानों से कहते हैं। भैया, मैं हूं लड़की का पिता कालिका प्रसाद स्टैंड वाला। अब स्टैंड

0: हूं, जिसे आप रटी रटाई जुबान में विदा होकर जाते जाते मेहमानों से कहते हैं, भैया मैं हूं लड़की का पिता कालिका प्रसाद स्टैंड वाला। अब स्टैंड ना रहा मगर लोग जानते हैं मुझे इसी नाम से। हाँ अरे आपको याद होगा वो रेलवे लाइन है ना, उसके पास पुराने सिनेमा के बगल में जो लंबा चौड़ा स्टैंड था ना, वो अपना ही था। लड़का बड़ा हो गया है, बड़े बड़े कारोबार कर लिए हैं उसने, लेकिन भैया जो कुछ है उसी स्टैंड की देन है।
1: जो हमारे संबंधी होने जा रहे हैं, जिसमें कई पीढ़ियों का रिश्ता जुड़ने जा रहा है, उसे हमारे बारे में, हमारे घर परिवार के बारे में सब कुछ जानना तो चाहिए। देखना, एक ना एक दिन जरूर आएगा जब उन्हीं में से कोई इंसान निकल आएगा और मेरा हाथ अपने हाथों में देकर मुझसे कहेगा, कालिका भैया तुम्हारा स्टैंड था तो क्या हुआ, आज तो तुम शहर के रईसों में से एक हो।
0: भूल जाने दीजिए पिताजी स्टैंड के नाम को, किसी कहानी की तरह भूल जाने दिए। जब तक वर्तमान कहानी में उस कहानी का जिक्र आता रहेगा, शशि की शादी किसी रईस खानदान से नहीं हो पाएगी। स्टैंड के इतिहास के परिणाम स्वरूप शादीशुदा होकर भी मेरी एक बहन निशी आज मायके में अपना दिन काट रही है।
1: तो तू यही कहना चाहता है ना कि मैंने 50 वर्ष की उम्र तक जो जिंदगी जिया है उसका इतिहास काला है। ये सच है, ये सच है कि मैंने कईयों को मारा है, पीटा है, छुरेबाजी की है, गोलियां खाई है, खुद भी पीटा हूं और कई बार जेल की सीटियों में बंद किया गया हूं। लेकिन उसी के साथ ये भी सच है कि जिन लोगों के लिए मैंने ये सब कुछ किया उसमें से एक तू भी था। तुझे याद नहीं आता वो दिन जब तू 8-9 साल का था और उस इलाके की झिंगरू बदमाश ने चाकू लेकर मुझे दौड़ा लिया था?
2: पिताजी, पिताजी, भागिए, भागिए पिताजी, बचिए पिताजी।
3: बड़ा आया पिताजी को बचाने वाला, और तेरा ही काम तमाम कर देता हूँ।
1: खबरदार झिंगरू, अगर तूने मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया तो तेरा मैं खून पी जाऊंगा। छोड़ दे ये चाकू।
3: बड़ा पहलवान बनता है, हीन क्यों नहीं लेता?
1: तू मुझे ललकार रहा है इंजनू, आज तक कालिका को किसी ने ललकारा नहीं। चल चल फैसला हो जाने दे। देख देख ये मड़ोरा तेरा। आप देख ये चाकू मेरे हाथ में है, लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं। जिनू तूने मेरी ताकत को ललकारा है ना, चाकू कमजोरों का हथियार है। ले मैंने इसे फेंक दिया, अब तेरा मेरा मलयुद्ध सड़क वाले देखेंगे। कैसे नहीं गिरेगा जमीन पर? देख ये रही मेरी ताकत जिसे तूने ललकारा था। इस वक्त मैं तेरे सीने पे सवार हूँ, चाहूँ तो तेरा गर्दन दबा सकता हूँ। नहीं बेटे नहीं, मैं इसे जान से नहीं मारूंगा। हाँ अपनी निशानी जरूर दे दूंगा, बस इसकी दोनों हथेलियां जख्मी कर देता हूँ। ले जिगरू संभाल, ये जान ले। किसी को मारने की मेरी जीवन में वो पहली घटना थी जिसमें तू भी शामिल था। जिगरू का वो चाकू जगह जगह मेरा साथ निभाता रहा। लोग जिगरू को तो भूल गए, लेकिन 35 वर्ष तक शहर के लोगों को कालिका याद रहा। आज मेरा इतिहास भले ही तुझे काला लगे बेटे, लेकिन मैं जरा से भी चूक गया होता तो जिगरू प्रसाद के हाथों तेरा ही इतिहास समाप्त हो गया होता।
0: लेकिन पिताजी जो बात बीत गई उसे पुनः सामने लाने से क्या फायदा?
1: फायदा है बेटा, मैं नहीं चाहता कि निशी की तरह शादी के बाद शशि भी।
0: बस करिए पिताजी, बस कीजिए।

0: कि नींव पर खड़ा हो वहां सत्यवादी बनने का प्रयास कार्य निरर्थक है।
1: बेटे, ये तुम्हारी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन याद रख कि झूठ झूठ होता है और सच सच ही होता है। जिस काम को करने में मन आनाकानी करता है उसे नहीं करना चाहिए।
0: तो पिताजी, मुझसे इस संबंध में आप कभी कोई बात मत कीजिएगा। आज के बाद मैं शशि के विवाह के बारे में कभी कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा।
2: आप नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा? किसी लड़की का भाई और पिता के अलावा और कौन सहारा होता है?
0: मिताली जी, आप
2: मुझे आप इस कमरे में देखकर आश्चर्य कर रहे हैं। मैंने बाहर से आप लोगों की बातें सुन ली हैं। अब कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। शशि ने मेरी भाभी बनना स्वीकार कर लिया है। आप लोगों को आज ही शाम को बातचीत करने के लिए मेरे घर आना है।
1: मिताली बिटिया।
2: हाँ चाचा जी।
3: मैंने कितनी बार कहा कि मुझे उस घर में शादी नहीं करनी है, मगर तुम लोग समझने का नाम ही नहीं लेती।
2: आखिर क्या कमी है उन लोगों में?
3: चिल्लाओ मत मिताली, वरना मुझसे मत कहना कि मैं चिल्ला रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे द्वारा बुलाए गए मेहमान नीचे बैठे माँ से बातें कर रहे हैं और उनका एक कान हमारी बातचीत की ओर है। शशि तुम्हारी सहेली है तो तुम्हें इससे मोह हो सकता है, लगाव हो सकता है, मगर मुझे तो नहीं। तू जानती है इनके फैमिली बैकग्राउंड?
2: मैं इन लोगों को रिश्ता तय कराने के लिए बड़े आत्मविश्वास के साथ लाई हूँ। अच्छा हो कि आप विवेक से काम लें।
3: विवेक को ये समझाना नहीं पड़ेगा कि विवेक क्या होता है। बढ़िया ही आत्मविश्वास वाली। जब लोग मुझसे पूछेंगे शादी कहाँ हो रही है, किस परिवार में हो रही है, तो वहां तुम्हारा आत्मविश्वास मेरे काम नहीं आएगा।
1: बेटे, मैं सोचता हूँ इससे आगे कुछ भी कहने की अब जरूरत नहीं है।
2: चाचा जी, आप
1: नहीं रहा गया बेटी, इसलिए सीढ़ियां चढ़कर तुम तक आना पड़ा। जैसे मेरे और रवि की बातें सुनकर तुमसे ना रहा गया और तुम ऊपर चली आई थी।
2: चाचा जी, अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो भी ये शादी होगी।
1: नहीं बेटी, अब ये शादी नहीं होगी। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे अपने और अपने परिवार के बारे में विवेक से कुछ कहना नहीं पड़ा। तुमने हमें अपने घर बुलाया, हमारी मदद करनी चाहिए, यही हमारे लिए बहुत है। आप लोग खुश रहें, मेरी ये दुआ है। अच्छा, हम चलते हैं।
2: जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। याद रखिए, परेशानियां सब पर आती हैं। न भूलिए कि आपकी भी एक बहन है और आपको भी दूसरे के दरवाजे खटखटाने पड़ सकते हैं। मुझे तो उस दिन का इंतजार रहेगा जब आप भी थक हार कर इन्हीं लोगों की तरह लौटा करेंगे और मैं आपके मुरझाए चेहरे को देखकर हंसा करूंगी, तालियां बजा बजा कर आपका स्वागत करूंगी। याद रखिए, मैं मूक जानवर नहीं हूँ कि जहाँ कहीं भेज देंगे चली जाऊंगी। मैं इसी घर में बहुत दिनों तक रहूंगी, सिर्फ तमाशा देखूंगी। मुझे भी देखना है कि कितनी सुंदर और कितने ऊंचे खानदान की लड़की इस घर में आती है।
4: मिताली बेटिया, आज के दिन सचमुच मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है।
2: और माँ, शायद विवेक भैया के लिए सबसे बुरा दिन।
4: तुम तो हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हो।
2: बस देखती जाओ माँ, आगे आगे होता है क्या।
4: इधर तो आ, देख शशि की शादी का कार्ड है।
2: हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है माँ। लेकिन माँ, कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी? और जाऊंगी भी तो क्या, मुझसे बात करना भी उचित समझेगी? जिसे हम अपने घर में अपमानित कर चुके हैं उसे बधाई में भी शायद व्यंग ही नजर आएगा। लो, आ गए तुम्हारे राजकुमार। आइए आइए विवेक भैया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके लिए खुशखबरी।
3: अपनी खुशखबरी अपने पास ही रखिए।
2: जरा ध्यान दीजिए, जिस लड़की की तस्वीर आपने पसंद की थी और अपनी वो सूट और टाई वाली तस्वीर भेजी थी, वो तस्वीर ये रही। बड़ा प्यारा सा खत भी है। पढ़कर आपकी तबीयत, क्या कहते हैं ना, वो हरी हो जाएगी। लो सुन लो माँ, आखिरी वाक्य मैं ही पढ़ देती हूँ। तस्वीर भेजने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी बेटी ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगी।
3: उसकी ये हिम्मत, क्या कमी है मुझ में?
2: भैया, अभी तो आप बाहर से आ रहे हैं, बालों और चेहरे पर कितनी गर्द पड़ी।

0: इत्मीनान से हाथ धो लीजिए, मैं अभी चाय बना के ला देती हूँ।
1: मैं तुम्हारा व्यंग अच्छी तरह समझता हूँ। मैं अभी अभी इसी वक्त उसके घर जा रहा हूँ।
0: तब तो भैया मेरी बात मानो, तुम नहा भी लो और जरा वही क्रीम कलर वाला सूट पहन के जाओ ना, वही तस्वीर वाला।
1: मेरा मूड खराब मत करो।
0: भैया होने वाली ससुराल में जा रहे हो, वहाँ सालियाँ होंगी, मोहल्ले वालियाँ होंगी, और ऐसे वहाँ जाओगे तो लोग क्या कहेंगे?
1: माँ इसे मना कर दो, मेरे ज्यादा मुंह ना लगे, वरना
0: वरना के आगे जो कुछ कहना है बस वहीं जाकर, यानी कि होने वाली ससुराल में। रिजेक्ट होने का बहुत दुख महसूस हो रहा है ना? अरे छोड़िए ना, क्या आना जाना, कल ही एक और जगह से तस्वीर आई है, उन लोगों ने आपकी भी फोटो मांगी है, बस यही फोटो भेज देती हूँ सूट वाली।
1: नीता
0: भैया अभी तो शुरुआत है, मेरी कामना है कि ऐसे अवसर बार बार आए। आओ मिताली, मैं तो सोच रही थी कि शायद तुम आओगी ही नहीं।
2: कौन सा मुंह लेकर आती मेरी बहन, मैंने भी तो तुम्हें वही दुख दिए है ना जो तुम्हें औरों ने दिए हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ शशि, मुझे माफ कर दो।
0: अरे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए मीता, मेरे कारण तुम्हारे और विवेक के बीच एक विभाजन रेखा खींची, अच्छे खासे परिवार में मेरे कारण कटुता पैदा हो गई, तनाव बढ़ा, संबंध बिगड़े, आखिर क्यों, मेरे लिए ही ना। सच मीता मुझे माफ कर दो।
2: वातावरण को और बोझिल न बनाओ शशि, मुझे रोने के लिए विवश न करो।
0: अरे रोना तो पड़ेगा ही, अभी नहीं तो मुझे विदा करते समय।
2: इधर बहुत भीड़ भाड़ है, चलो उस कमरे में चलते हैं।
0: हाँ चलो, तुमसे बहुत सी बातें करनी है।
2: अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारे श्रीमान जी हैं कौन, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं?
0: सब उन्हीं से पूछ लेना, घंटे दो घंटे में बाजे गाजे के साथ आ ही रहे होंगे।
2: फिर भी
0: देखो यही तस्वीर है उनकी।
2: अरे अरे ये तो कुमार साहब हैं, अपने जाने माने पत्रकार, आए दिन पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख और तस्वीर के साथ छपते रहते हैं, भला कौन नहीं जानता इन्हें। पर ये तो बताओ, ये दुर्लभ जीव तुझे कहाँ मिल गए? आते हैं तो उनसे पूछती हूँ। अभी एक महीना पहले इन साहब का इंटरव्यू दिल्ली की एक पत्रिका में छपा था, जिसमें श्रीमान जी ने कहा था फिलहाल शादी करने का तो कोई इरादा नहीं है,
0: और उसी में ये भी तो छपा था कि कोई साधारण सी सीधी साधी भोली सी लड़की कहीं दिख गई तो उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दूंगा। अभी पिछले दिनों उन्होंने मेरी तस्वीर भेजी।
2: उन्होंने तुम्हारी तस्वीर भेजी?
0: हाँ
2: तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम्हारी तस्वीर उनके पास कहाँ से पहुंची, और अगर पहुंची भी तो बदले में अपनी तस्वीर भेजने के तुम्हारी तस्वीर भेज दी।
0: ये तस्वीर देख रही हो ना?
2: हाँ ये तो वही तस्वीर है जो अखबार में छपी थी।
0: तो यही तस्वीर उन्होंने अपनी तस्वीर के साथ भेजी है, इस आशय का पत्र लिखकर कि यदि इस लड़की की शादी अभी नहीं हुई हो तो मैं शादी करने को तैयार हूँ, मुझे लड़की के अलावा और किसी बात की चाह नहीं है, और साथ में एक शर्त और रखी है। देखो घर वाले कहाँ तक पूरी करते हैं।
2: कौन सी शर्त? कहीं दहेज में तुम्हारा ये मकान तो नहीं मांगा है ना?
0: अरे नहीं भाई, उन्होंने लिखा है कि बस हम 5 मित्र आएंगे और दहेज में लड़की के सिवाय कुछ दिया गया तो लड़की वहीं छोड़ देंगे, बस घर वाले इसी बात पर नाराज हैं, कहते हैं लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले नाते रिश्ते वाले क्या कहेंगे।
2: अरे लोग कहते हैं तो कहा करें, दूल्हे की शर्त तो पूरी करनी ही पड़ेगी, जो कहेगा उसे बहुत कुछ सुनाने के लिए समझ लो मैं तैयार बैठी हूं।
0: अच्छा मीता एक विनती है, विवेक से कहना अगर मेरे या मेरे परिवार की ओर से उन्हें कोई कष्ट पहुंचा हो तो हम लोगों को माफ कर देंगे।
2: इस शुभ घड़ी में तुमने किस आदमी का नाम ले लिया, मैं उसे तुम्हारा ये संदेश कहूंगी?
0: मीता बड़े भाई के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता।
2: रिश्ते से कोई बड़ा नहीं होता शशि, बड़ापन बनाए रखने से बड़ा होता है। अभी तो उन्हें एक लड़की ने रिजेक्ट किया है, जब दर्जनों कर लेंगी तब हम दोनों मिलकर उनके दिल का हाल पूछेंगे। कहते थे

0: लड़की के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता।
1: देखो मिताली, अच्छाई इसमें नहीं होती कि किसी को निराश कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए, उसे मिटा दिया जाए। अरे अच्छाई तो इसमें होती है कि अंधेरे में रोशनी की एक किरण बिखेर दी जाए, गिरते हुए का हाथ थाम लिया जाए, मिटते हुए को नवजीवन प्रदान किया जाए।
0: लेकिन विवेक तो,
1: विवेक ने जो कुछ किया उनका अपना दृष्टिकोण था, और अब हम जो करेंगे हमारा अपना दृष्टिकोण होगा। अच्छा मीता, मुझे पता चला है कि मेरी कल से होने वाली ननद ने किसी को रिजेक्ट किया है, और वो कोई अन्य नहीं विवेक जी ही हैं।
0: तो नेहा तुम्हारी ननद है?
1: हाँ, होने वाली ननद। मैं उसे समझा लूंगी, ये तो मुझ पे छोड़ दे। इनसे कहूंगी ये भी समझा देंगे। विवेक से कहना अपनी शादी की तैयारियां करें।

श्रोताओं, अभी आप रश्मि शर्मा द्वारा लिखित एवं मोहम्मद सलीम राही द्वारा निर्देशित नाटक एक किरण रोशनी की सुन रहे थे। प्रतिभागी कलाकार थे लक्ष्मी देवी, निर्मला उपाध्याय, अनीस बेगम, शारदा राम, प्रदीप कुमार, इस्माइल खान, ए एच नूर मोहम्मद और फिरोज खान।

लाइव फोन आउट प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स आप सुनते हैं सोमवार बुधवार और शुक्रवार को। समय दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक। अब स्टूडियो से प्रेजेंटर्स आपको फोन करते हैं और मनपसंद गीतों से सजाते हैं महफिल को। अब तक आपने अपना नाम पता व फोन नंबर हमारे पास दर्ज न कराया हो तो जल्दी से दर्ज कराएं इस नंबर पर 9474234000। इस प्रोग्राम का भरपूर आनंद आप लेते हैं हमारे विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम चैनल पर सप्ताह के 3 दिन 2:30 बजे से।

अब एक सूचना, क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।

जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का ये अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों पर। कल दोपहर बाद 2:30 पर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनेंगे लाइव फोन आउट प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स। तत्पश्चात 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 तमिल कार्यक्रम से, जिसमें आप सुनेंगे जीवी पंत अस्पताल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सत्या जगदीश से ली गई भेंट वार्ता। तत्पश्चात 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में सुनिए रविंद्र गीत। कृषि जगत कार्यक्रम में संध्या 6 श्री इसरार अहमद से बातचीत की जाएगी। विषय रहेगा फसल सुरक्षा में बायो तकनीक। तत्पश्चात 6:30 पर सुनिए समाचार तरंगणी। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 5वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:45 पर। वहीं कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 6:55 पर। दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम का समय रहेगा 7:20। 7:30 पर युवाणी में होगा फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे रात 8:15 पर। तत्पश्चात 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन बस इस अंतराल के बाद।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBI Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
5: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
6: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम।
7: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
8: बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत।
9: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
6: बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी।
10: माझी पॉलिसी माझा हाथी।
6: बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक।
11: मारी पॉलिसी मारे हाथ।
6: बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर।

मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।

नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। 23,731 करोड़ रुपए के परिव्यय से बढ़ेगा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन। राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन 2026 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने साइबर हमलों और डिजिटल खतरों से निपटने के लिए बेहतर सुरक्षा प्रणाली की जरूरत बताई। गारचरामा राजकीय विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आयोजित हुआ पहचान और चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर और 15 अगस्त से पहले प्राथमिकता वाले परिवारों और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों से आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील।

0: सांध्य समाचारों के साथ मैं ज्योति लकड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। योजना पर कुल 23,731 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना से करीब 1.5 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। योजना के तहत कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ने के अपशिष्ट और अन्य जैविक कचरे से स्वच्छ ईंधन तथा जैविक खाद तैयार की जाएगी। इससे ग्रामीण आय बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। यह योजना वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य देश में कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देना और जैव संसाधनों के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करना है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यह विधेयक सदन में पेश किया। यह विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, आयकर अधिनियम और वित्त अधिनियम में संशोधन का प्रावधान करता है। यह इस वर्ष 5 जून को जारी आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 का स्थान लेगा। विधेयक का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के प्रभाव को कम करना, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को समर्थन देना है। इसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से होने वाली ब्याज आय पर कर छूट देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही विशेष क्षेत्रों में कच्चे हीरों की बिक्री से कुछ विदेशी कंपनियों की आय को भी कर छूट देने का प्रावधान है। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि बदलती तकनीक के साथ समुद्री सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि साइबर हमलों, ड्रोन और डिजिटल नेटवर्क से जुड़े खतरों को देखते हुए बंदरगाहों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने की जरूरत है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाहों की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए जो संभावित खतरों का पहले से आकलन कर सके और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई कर सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप

में उभर रहा है। सागरमाला, पीएम गति शक्ति, समुद्री भारत विजन 2030 और समुद्री अमृतकाल विजन 2047 जैसी योजनाओं के तहत नए समुद्री ढांचे का विकास किया जा रहा है। सुरक्षा को बंदरगाहों और डिजिटल प्रणालियों की योजना और निर्माण के शुरुआती चरण से ही शामिल किया जाना चाहिए। श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रस्तावित बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और सभी बंदरगाहों पर बेहतर समन्वय तथा सुरक्षा मानकों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर और आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गारचरामा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पहचान एवं चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया। विद्यालय की आईसीटी लैब में आयोजित इस शिविर में प्रधानाचार्य सीआरसी समन्वयक प्रभाष रॉय और अन्य अतिथि उपस्थित रहे। गारचरामा जिला अस्पताल के चिकित्सकों की टीम ने विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस शिविर में कुल 27 विद्यार्थियों ने भाग लिया। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम द्वारा कल शाम 5:30 बजे से हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय है स्वच्छता और ओआरएस के माध्यम से दस्त की रोकथाम। इस कार्यक्रम में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान संस्थान के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर मितुल साहा विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए फोन नंबर 2456662 और 2447445 पर कॉल कर सकते हैं। द्वीप समूह में प्राथमिकता वाले परिवारों और अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड धारकों से अपील की गई है कि वे 15 अगस्त से पहले अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवा लें। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को देशभर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड आयुष्मान ऐप, नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र या जीवी पंत अस्पताल स्थित आयुष्मान भारत हेल्प डेस्क के माध्यम से बनवा सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के एंटी ड्रग स्क्वाड द्वारा नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय था मादक पदार्थों को ना कहें। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. पर्ल देवदास ने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने छात्रों को अपनी ऊर्जा सकारात्मक और रचनात्मक गतिविधियों में लगाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर मुख्यालय एसएसबी असम के कमांडेंट पराग चतुर्वेदी ने देश में बढ़ते नशे के खतरे और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पर वीडियो प्रस्तुति और संवादात्मक सत्र भी आयोजित किए गए। डिगलीपुर में बेसहारा मवेशियों की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने तत्काल कदम उठाने का निर्णय लिया है। बेसहारा मवेशियों के कारण फसलों को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और किसानों की आजीविका प्रभावित हो रही है। इस संबंध में डिगलीपुर के सहायक आयुक्त ने ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित कानूनों के तहत बेसहारा मवेशियों के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए अपने अपने क्षेत्र में आवश्यक कदम उठाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूर

मंजूरी दे दी है। 23,731 करोड़ रुपए के परिव्यय से बढ़ेगा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन। राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन 2026 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने साइबर हमलों और डिजिटल खतरों से निपटने के लिए बेहतर सुरक्षा प्रणाली की जरूरत बताई। गाराचरम्मा राजकीय विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आयोजित हुआ पहचान और चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर और 15 अगस्त से पहले प्राथमिकता वाले परिवारों और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों से आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7:15 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधित चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण समुद्र में वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से रहेगी, जो कि बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग तक हो सकती है। अतः मछुआरों को 10 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। जन सेवाओं को मौसम संबंधित चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो भागों पर भारी वर्षा होगी, जो कि 7 से 11 सेंटीमीटर तक हो सकती है। साथ ही द्वीपों के एक या दो भागों पर गरज के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी। ये थी मौसम की जानकारी। और अब जलयान यात्रा संबंधी सूचना। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार MV जॉली बॉय मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल सवेरे 7 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान शनिवार 8 तारीख को सुबह 7 डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। MV कैम्बलबे लिटिल अंडमान के लिए कल रात 9 श्री विजयपुरम से जाएगा तथा इसकी वापसी होगी शनिवार 8 तारीख को रात 9 लिटिल अंडमान से। MV कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर कल प्रातः 7 श्री विजयपुरम से चलेगा। ये जलयान शनिवार 8 तारीख को शाम 4 कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। MV सेंटिनल कैम्बलबे की यात्रा पर बृहस्पतिवार 13 तारीख को सवेरे 7 श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा इसकी वापसी होगी रविवार 16 तारीख को रात 9 कैम्बलबे से। जाते व आते समय ये जलयान लिटिल अंडमान, कार निकोबार, चौरा, तेरेसा, कचाल, नानकौरी, माकाचुआ और अफ्राबे में भी रुकेगा। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल प्रातः 6 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 लॉन्ग आइलैंड और रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से। MV बम्बुका स्वराज द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से। MV बाराटान कल दिन में 11 शहीद द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। MV रंगत स्वराज द्वीप के लिए कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2 स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम लौटेगा।

घाट पे शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्रीविजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप के लिए कल शाम 5 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान परसों शनिवार 8 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम लौटेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम में पहले सुनिए समीर का लिखा गीत त्रिनेत्र फिल्म से। स्वर दिया कुमार सानू ने, संगीत से सजाया नदीम श्रवण ने।

कुमार सानू और चित्रा के गाए विरासत फिल्म के इस गीत के साथ ही दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, समय हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। बीता हुआ समय हमेशा हमें कुछ सिखा कर जाता है और आने वाला समय उम्मीदों से भरा होता है। और वर्तमान, वर्तमान से ही तो हम अपना भविष्य निर्मित करते हैं। तो दोस्तों, हमेशा जीवन में मेहनत करना चाहिए और एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना चाहिए।

0: आज बृहस्पतिवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
1: पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
0: दोस्तों, कंप्यूटर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और आज के वक्त में जब कंप्यूटर के बिना हमारा कोई भी काम नहीं चल सकता, ऐसे समय में कंप्यूटर के बारे में जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी संदर्भ में आइए और बातें जानते हैं समीरा बानू की इस वार्ता दैनिक जीवन और कंप्यूटर के माध्यम से।
2: दोस्तों, आज का विषय है दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने हमें अनेक चमत्कारी वस्तुएं प्रदान की हैं। विज्ञान के वरदानों में कंप्यूटर का स्थान सर्वोपरि है। आज चारों ओर कंप्यूटर का ही बोलबाला है। यह मानव के जीवन को सरल एवं सुखद बनाता है, इसलिए इस युग को कंप्यूटर युग कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति न होगी। कंप्यूटर की तुलना यदि मानव मस्तिष्क से की जाए तो गलत नहीं होगा। यह एक ऐसी मशीन है जो कठिन से कठिन जोड़, घटा, गुणा, भाग आदि को अत्यंत शीघ्रता से निर्दोष प्रस्तुत कर देता है। कंप्यूटर की विशेषताओं के कारण ही आज यह हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी व आवश्यक अंग बना हुआ है। कंप्यूटर की उपयोगिता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज देश के लगभग हर विद्यालय में इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है तथा स्थान स्थान पर इसके प्रशिक्षण की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। आजकल कंप्यूटरों का प्रयोग बैंकों, रेलवे स्टेशनों, विद्यालयों, कार्यालयों तथा दफ्तरों आदि में किया जाता है। बैंक में आप अपना खाता नंबर बताइए, कंप्यूटर पर एक बटन दबाकर वहां बैठा व्यक्ति आपके खाते का पूरा विवरण बता देगा। रेलवे स्टेशनों में आरक्षित कराने के लिए जहां पहले लंबी लंबी लाइनें लगती थी, सुबह से शाम हो जाती थी, वहीं अब कंप्यूटर की कृपा से यह काम मिनटों में हो जाता है। इसी प्रकार हवाई जहाज की सीटें भी बुक कराई जा सकती है। विद्यालयों में या यूं कहा जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक विषयों की पढ़ाई कंप्यूटर के द्वारा की जा सकती है। पुस्तक प्रकाशन के कार्य में भी कंप्यूटर का बहुत योगदान है। प्रिंटिंग तथा डिजाइनिंग में भी कंप्यूटरों का प्रयोग अत्यंत सुविधाजनक एवं बेहतर सिद्ध हो रहा है। कार्यालयों तथा दफ्तरों में भी कंप्यूटर की भूमिका चमत्कारी है। कर्मचारियों के वेतन, कार्यालयों के आय व्यय का ब्यौरा तथा असंख्य खातों का हिसाब कंप्यूटर में सुरक्षित रहता है। आजकल बिजली, पानी व टेलीफोन आदि के बिल भी कंप्यूटर पर ही तैयार किए जाते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कंप्यूटर की सेवाएं बहुत उपयोगी हैं। इसकी सहायता से बीमारी की जाँच और रोगी का रिकॉर्ड रखने में सहायता मिलती है। आप अपने रोग के बारे में विदेशी डॉक्टरों से भी परामर्श ले सकते हैं। यह सब काम कंप्यूटर कर देता है। विज्ञापन के क्षेत्र में कंप्यूटर ने अभूतपूर्व क्रांति उपस्थित की है। टीवी पर दिखाए जाने वाले अनेक विज्ञापन कंप्यूटर के द्वारा ही विकसित किए जाते हैं। संचार के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का एक अपना अलग ही स्थान है। फैक्स, पेजिंग, मोबाइल के बाद इंटरनेट, चैट, सर्फिंग आदि ने मानो सारे संसार को आपके कमरे में कैद कर दिया हो। आप अपने कंप्यूटर पर विश्व भर की किसी संस्था अथवा उत्पाद की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब तो शादी विवाह के लिए जन्म कुंडलियों का मिलान भी कंप्यूटर कर देता है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का योगदान कम नहीं है। तरह तरह के खेल भी कंप्यूटर के स्क्रीन पर खेले जाते हैं। इन सब के उपरांत इंटरनेट के आविष्कार ने कंप्यूटर के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है। इंटरनेट से ही

0: कंप्यूटर का पूरा लाभ उठाया जाना संभव हुआ है। आज शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग ना किया जाता हो। हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि कंप्यूटर वर्तमान युग की आवश्यकता बन चुकी है। इनसे हमें प्रायः सभी क्षेत्रों में सहयोग मिलता है। कंप्यूटर का प्रयोग समय एवं धन की बचत तो कराता ही है, साथ में सही गणना देता है। अब तो घर घर में कंप्यूटर देखे जा सकते हैं। आज हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर की अहम भूमिका व उपयोगिता हो चुकी है। धन्यवाद।
1: दोस्तों, बहुत सी बातें बताई समीरा ने अपनी इस वार्ता दैनिक जीवन और कंप्यूटर में। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: दोस्तों, कविताएं मन का दर्पण होती हैं और कविताओं में हम अक्सर अपने हर एक भाव को शब्दों में उतार कर अपना मन हल्का करते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं और उसे शब्दों में ऐसे सजा कर प्रस्तुत करते हैं कि वो एक खूबसूरत कविता बनकर निकलती है। तो आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं ऋषिता चौधरी की कुछ स्वरचित कविताएं।
1: दोस्तों, मेरी पहली कविता का नाम है कुछ अल्फाज खुद के लिए। एक ऐसा भी चरण था जब हार मैंने मान ही लिया था। एक ऐसा भी चरण था जब हार मैंने मान ही लिया था। लोगों की बात सुनकर एक पल मेरे भी कदम डगमगाए। जब सारी कोशिशें असफल हुई तब सारे लोग सिर्फ मुझे नाकामयाब बुलाए। सिर्फ वो मेरी मन की आवाज ही थी जिसने मुझे हर पल एक नई उम्मीद दी। वह मुझसे कहती रही, मैं बहुत आगे बढ़ सकती हूँ, कुछ अच्छा कर सकती हूँ। कभी सोचा ना था मैंने यहाँ तक भी आ पाऊंगी, जो दिल में आए खुल के कह पाऊंगी। मेरे मन को विश्वास था मुझ पर, तो मैंने भी मन का मान रखा। मुश्किलों को हराकर अपने सफलता के रास्ते खुद बनाकर आगे मैं बढ़ती गई। याद है मुझे जब खुद को सबसे कम समझती, रोती शिकायतें करती, खुद को बस कोसती रहती। उन सभी बातों को पीछे छोड़कर अब आगे निकल आई हूँ, मुश्किल हालात में भी अब मुस्कुराई हूँ। दोस्तों, बार बार कोई उम्मीद देने आएगा नहीं, बार बार तुम्हारा हौसला बढ़ाएगा नहीं। वो सिर्फ तुम्हारे मन की आवाज ही होगी जो तुम्हें हमेशा प्रेरित करेगी, तुम्हें तुम्हारे आंसुओं को पोंछकर फिर से मुस्कुराने की किरण दिखाएगी। कितने ही लोगों ने मुझे भी नीचे गिराना चाहा, कितने ही लोगों ने मुझे भी नीचे गिराना चाहा, पर मेरी हिम्मत ही ऐसी थी कोई गिरा ना पाया। गलतियां तो बहुत की मैंने, पर जिंदगी का भी दिल इतना बड़ा उसने मुझे माफ कर हमेशा गले से लगाया। आखिर कौन जानेगा मुझे मुझसे बेहतर, मैं काफी हूँ मेरे लिए। बहुत कुछ सीखा है मैंने और बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर जिंदगी को खुल के जीना सीख जाऊं उतना भी काफी है। हर बेरंग दुखों के आलम में वो खुशी के गुलाल से खुद को रंग जाऊंगी। एक रिश्ता जो मेरा है खुद से, उसे अब बेहतर बनाऊंगी। जमीन पर रहकर आसमान को छूने के ख्वाब है मेरे, तो ठोकर खाकर भी बेहतर बनना चाहूंगी। जमीन पर रहकर आसमान को छूने के ख्वाब है मेरे, तो ठोकर खाकर भी बेहतर बनना चाहूंगी। पर फिर एक सवाल उठा मन में, क्या मैं इतनी काबिल हूँ? पर फिर एक सवाल उठा मन में, क्या मैं इतनी काबिल हूँ? तो जवाब मैंने खुद को दिया, हाँ हूँ मैं काबिल, हाँ हूँ मैं काबिल। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है एक अच्छा और कामयाब इंसान बनना। इसलिए एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में सब भागते रहते हैं, पर दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए बेहतर बनना तुम। क्योंकि याद है ना, जब हर जगह शोर था तब तुम्हारे मन की आवाज ने तुम्हें शांत किया था और तुम्हें तुमसे मिलाया था। दोस्तों, मेरी अगली कविता का नाम है सबसे अनमोल क्या है। मैं धूप से आंख मिलाने चली, पर मुझे तो बारिश मिली। सारे काम धरे के धरे रह गए, इंतजार की घड़ी से बंधने लगी। हालात के हाथों आखिर कौन यहाँ कुछ कर पाया है? जो हारा वो हार गया, पर जिसकी लड़ाई जारी थी वही सिकंदर कहलाया है। पर लड़ाई कहाँ आसान होगी, शिद्दत से जिसका जिक्र किया था रब से तुमने। रब भी कहता, दुआ तो कबूल होगी तेरी, पर क्या तुम उससे पहले उसकी कीमत चुका पाओगे? कई चुनौतियां आई, सबसे मैं भी लड़ती गई। एक चुनौती आई जहां मैं भी घबरा गई। बार बार तबीयत का यूं खराब होना मुझे शूरवीर से शून्य बनाता गया। तन मन में सिर्फ अपने हाल पे गुस्सा सा आता गया। तो सब कुछ छोड़ मैं अपने तबीयत सुधारने में लग गई। एहसास हुआ कि सारे मौके छूटने लगे हैं, अपने सपनों से ही हार गई। रात दिन बस पछतावा ही पछतावा था कि कहां मैं अपनी स्वास्थ्य ठीक करने में लगी हूँ और जिंदगी के सारे कीमती चीजें मुझसे दूर होते जा रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में भागना ही तो बस काम है।

0: जहाँ आराम का नाम भी काम है। उससे छुट्टी मिली पर कारण जुखाम है। कोसने लगी फिर जिंदगी को, रब से भी फिर खूब शिकायत की। कोसने लगी फिर जिंदगी को, रब से भी फिर खूब शिकायत की। पर बुखार में तपकर पूरे शरीर में एक ऊर्जा आई। ऊर्जा ने उम्मीद जगाई कि देख कितना काबिल है तू। इसलिए कभी कभी खुद को साबित करने से ज्यादा खुद का ख्याल भी रखा करो। असली खजाना तेरे खुद के हाथों में है। पहचान खुद की लकीरों को, बाकी सब तो यहीं छोड़ जाना है। क्या सोच में हो अब भी? बंद कर अपने हाथों की मुट्ठी। वक्त तो निकलता जाएगा, रुक तू और रख ले ख्याल, वरना यह मौका फिर ना आ पाएगा। संतुलित आहार, सरल जीवन, स्वास्थ्य का मोल अनमोल है। जिसने यह पहचाना उसका भी जीवन मुश्किलों से घिरा, पर अब जीवन सरल है। स्वास्थ्य है जीवन की नींव, इसके बिना कुछ भी मिल जाए सब कुछ है बेकार। तन खुश तो मन भी प्रसन्न, जीवन में हो आहार हरा भरा तो स्वास्थ्य भी होगा लाजवाब। रत्नों की चमक भी ढल जाएगी, तराश खुद को या उम्र भर तुम्हें शानदार बनाएगी। रत्नों की चमक भी ढल जाएगी, तराश खुद को या उम्र भर तुम्हें शानदार बनाएगी। रख ले ख्याल, बाकी सब व्यर्थ है, स्वास्थ्य ही तेरा सब कुछ है। रख ले ख्याल, बाकी सब व्यर्थ है, स्वास्थ्य ही तेरा सब कुछ है। दोस्तों, मेरी तीसरी कविता का नाम है इजहार अब भी बाकी है।
1: बहुत बेहतरीन कविताएं थी रिशिता की। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: क्या आपके ज़िले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर ज़िले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने ज़िले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने ज़िले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने ज़िले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा आज का यह पत्रिका कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार,
0: वादा करते हैं जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त दीपक कुमार सिंह को अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है। अब कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर आज भी अड़े रहे। इस कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित रही। हंगामे के बीच सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुई अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। इससे पहले पूर्वान 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल की कार्यवाही को शुरू करना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच कुछ सदस्य अपनी सीटों से बाहर आ गए। हालांकि सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से उनकी सीटों पर लौटने का कई बार आग्रह किया। हंगामे के बीच ही शून्यकाल के दौरान भाजपा के राघव चड्ढा ने डॉक्टरों को डायग्नोस्टिक केंद्रों द्वारा कथित तौर पर कमीशन राशि दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए इस पर रोक लगाने और मरीजों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीडा ने सरकारी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 27% आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक पहुंच नहीं पाया है। भारतीय जनता पार्टी के सदानंद महालू शेठ तानबड़े ने कहा कि गोवा में वर्ष 2012 में खनन गतिविधियां बंद होने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही हजारों परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने केंद्र से खनन क्षेत्र को स्थायी और पारदर्शी तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए लगातार हंगामा करते रहे। सभापति ने उनसे अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर दिन कुछ लिखकर लाते हैं और सदन में उसे पढ़ते हैं। इस पर कांग्रेस सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति देने की मांग की। जब सभापति ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर फिर हंगामा शुरू कर दिया। इन सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति देने की मांग की। सभापति ने कहा कि विपक्षी सदस्य शांत रहेंगे तो वो पूरक प्रश्नों के बाद नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने की अनुमति देंगे। सदस्यों के शांत होने के बाद सभापति ने नेता प्रतिपक्ष खड़गे से अपनी बात रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा रहा कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर अपना वक्तव्य दें। श्री खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि सदन में अपनी बात रखना उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि कब बोलना है, क्या बोलना है, ये तय करना उनका अपना अधिकार है और इसके बारे में उन्हें अब क्या संसदीय कार्य मंत्री से पूछना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने आसन से कहा कि गृहमंत्री को सदन में आने और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं। इस पर सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से गृह

मंत्री को विपक्ष की भावनाओं से अवगत कराने को कहा। हंगामे के बीच सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को दोहराया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किया जाना है, इसलिए सदन में व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को 2:45 तक के लिए स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर राज्यसभा की बैठक शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक पर चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं को उठाया। तृणमूल कांग्रेस के बाबुल सुप्रियो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीजू जनता दल की सुलता देवी, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सदस्य डॉ एम थंबीदुरई, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भारतीय जनता पार्टी के डॉ सिकंदर कुमार, महेंद्र भट्ट, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, डीएमडीए के सदस्य एल के सुधीश और मनोनीत सदस्य सतनाम सिंह संधू ने भी हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगे 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। विधेयक का उद्देश्य भारत की संचित निधि से उन खर्चों के लिए धन निकालने की खातिर मंजूरी देना है जो व्यय 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ खास सेवाओं पर और उस साल के लिए मंजूर रकम से अधिक किए गए थे। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक कल 11 बजे होगी। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारालूल हक। लोकसभा ने आज कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा न हो सकी। विधेयक का उद्देश्य विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करना तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने पिछले कई दिनों की तरह आज भी सदन में हंगामा जारी रखा, जिससे लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र की शुरुआत से ही सदन में एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सदन की कार्यवाही सवेरे 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और फिर सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य जहां अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे थे, वहीं कांग्रेस सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर

पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग को दोहराते हुए हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को चलना चाहिए, सदन में चर्चा और संवाद होना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना सदन की गरिमा को गिराता है, ये अच्छी परंपराएं नहीं है। उन्होंने कहा कि देश आपके आचरण को देख रहा है। शोर शराबा न थमने पर अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 फिर शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा उसे पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रख दिया। पीटासीन अध्यक्ष संध्या रॉय ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने और कार्रवाई चलाने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि आपका ये व्यवहार उचित नहीं है, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हंगामा न थमने पर पीठासीन अध्यक्ष ने बैठक शुक्रवार सुबह 11 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। विपक्ष के हंगामे के कारण कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा न हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एनके प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने के राधाकृष्णन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और प्रेमचंद्रन सहित कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में फंड मैनेजरों के भारत आने को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि विदेशी निवेश को भारत में कारोबार में लगा पैसा नहीं माना जाएगा। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान कानूनी प्रावधान को हटाना है, जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR को लागू करने से रोकता है। RTGS और NEFT के जरिए होने वाले रियल टाइम भुगतान के लिए सेवा शुल्क देना पड़ता है। हालांकि UPI लेन देन को ऐसे शुल्क से अभी छूट प्राप्त है। संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव कराधान से जुड़े एक बड़े कानून का हिस्सा है। कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर कम शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं तथा भुगतान अवसंरचना कंपनियों के लिए एक टिकाऊ राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है, जो डिजिटल भुगतान व्यवस्था को संचालित करती हैं। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 10A बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क लगाने से रोकती है। वहीं आयकर अधिनियम की धारा 269SU के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले बड़े व्यवसायों के लिए रुपे डेबिट कार्ड और भीम UPI QR कोड सहित कुछ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करना अनिवार्य है। वर्तमान में कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली प्रदाता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269SU के निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए किसी पर भी सीधे या परोक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकता। इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इन हमलों में तत्काल 1,00,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि लाखों लोग गंभीर रूप से घायल और विकिरण के शिकार हुए थे। राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन की निगरानी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता

0: वाली शीर्ष समिति द्वारा की जाती थी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों भरा कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का हम बच्चे हिंदुस्तान फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है अनूप जलोटा, प्रीति सागर और साथियों ने, बोल सनम गोरखपुरी के, धुन बनाई जमील बिकानेरी ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
0: Nexa. अब एक सूचना। क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल की शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का ये अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। सूचना समाप्त हुई।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए रोमांस फिल्म का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की, गीत रचना आनंद बख्शी की।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं उदित नारायण और देवकी पंडित को फिल्म पांडव से। श्याम राज के लिखे गीत को संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

पांडव फिल्म का ये गीत था उदित नारायण और देवकी पंडित की आवाज़ों में। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार केंद्र

0: शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन तथा राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर विभिन्न पदों के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों में MIS डेटा एनालिस्ट का एक पद, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के दो पद, अकाउंटेंट का एक पद तथा HMIS असिस्टेंट के 6 पद शामिल है। चयनित अभ्यर्थियों को MIS डेटा एनालिस्ट पद के लिए 40,000 रुपए प्रतिमाह, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एवं अकाउंटेंट के पद के लिए 30,000 रुपए प्रतिमाह तथा HMIS असिस्टेंट पद के लिए 20,000 रुपए प्रतिमाह समेकित मानदेय प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता प्रत्येक पद के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है। MIS डेटा एनालिस्ट के पद के लिए BE BTech या MCA या MBA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट अथवा समकक्ष योग्यता के साथ संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव आवश्यक है। MPH मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ अथवा समकक्ष योग्यता भी मान्य है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, संबंधित तकनीकी योग्यता तथा TIA एवं MCSA क्षेत्र का अनुभव अपेक्षित है। अकाउंटेंट पद के लिए MCOM डिग्री के साथ कंप्यूटर का ज्ञान या BCOM डिग्री के साथ लेखा एवं वित्त क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। HMIS असिस्टेंट पद के लिए BCA कंप्यूटर साइंस प्रौद्योगिकी सूचना अथवा समकक्ष विषय में स्नातक डिग्री तथा संबंधित अनुभव आवश्यक है। सभी पदों के लिए आयु सीमा 21 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन शैक्षणिक योग्यता अथवा अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 है। साक्षात्कार संबंधी जानकारी अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही 22 जुलाई का द डेली टेलीग्राम भी देखा जा सकता है। रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexa.
0: गौरवगान कार्यक्रम के तहत आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

गौरवगान कार्यक्रम के तहत अभी आप चंद देशभक्ति गीतों का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
1: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, असम में एक हाईवे पे बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये है बहारा चारियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और

0: प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
1: आर्टिकल 370 गेटिंग अब्रोगेटेड।
2: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
3: लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
4: 19 लाख हाउसहोल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
5: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
4: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
0: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
6: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके, उसकी चिंता करते हैं।
0: 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
7: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। निशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन

0: यार ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।
1: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर चार मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है, जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये एक जन आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.22 रुपए पर बंद हुआ।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को POJK में तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी बलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening.

0: भैरवी काले की इस प्रस्तुति के बाद अब सुनते हैं सुरेश भट्ट की रचना। शब्द है माझी उदास गीते तू एक दोस कारे, और गा रही हैं भैरवी काले। संगीतकार हैं अजय हेड़ाऊ।
1: नेक्स्ट कॉम्पोजिशन माझी उदास गीते तू ऐकतोस कारे इज पेंड बाय सुरेश भट्ट, कंपोज्ड बाय अजय हेडाऊ एंड सिंगर इज भैरवी काले।

0: कार्यक्रम के इस भाग के अंत में प्रस्तुत है रामदास कुहिटे का लिखा ये गीत। भैरवी काले ने गाए इस गीत को, संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाऊ ने। इस गीत के बोल हैं, गणतंत्र भारताचा स्वातंत्र्य दीप देवो।
1: भैरवी काले कंक्लूड्स हर रिसाइटल विथ गीत गणतंत्र भारताचा स्वातंत्र्य दीप देवो। द पोएट इज रामदास कुहिटे and is composed by Ajay Hedau.

0: कार्यक्रम के इस भाग का समापन होता है। कलाकार थीं भैरवी काले, संगत कलाकार थे हारमोनियम पर अजय हेड़ाऊ, तबले पर निखिल मड़ावी और वायोलिन संगत निशिकांत देशमुख इनकी थी।
1: विद दिस मराठी गीत बाय भैरवी काले वी कम टू द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। द अकंपनिस्ट वेर अजय हेड़ाऊ ऑन हारमोनियम, निखिल मड़ावी ऑन तबला एंड वायलिन आर्टिस्ट वॉज निशिकांत देशमुख।
0: यह ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी नागपुर के स्टूडियो में किया गया। आज का प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जारी है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भाग।
1: दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियो ऑफ आकाशवाणी नागपुर। द प्रोग्राम कंटिन्यूज, लेट अस लिसन टू द नेक्स्ट सेगमेंट।
2: ये आकाशवाणी है, क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे सुखविंदर सिंह द्वारा पंजाबी सूफी व लोकगीत।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन दिस पार्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक यू विल लिसन टू पंजाबी सूफी एंड फोक सॉन्ग्स बाय सुखविंदर सिंह।
2: सुखविंदर सिंह, जिन्हें उनके मंचीय नाम दलेर अली के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब के एक प्रतिष्ठित सूफी एवं लोक गायक हैं। संगीत के क्षेत्र में 2 दशकों के अनुभव के साथ उन्होंने पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक एवं संगीत परंपरा के संरक्षण और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले 20 वर्षों के दौरान उन्होंने अनेक कव्वाली कार्यक्रमों, सांस्कृतिक समारोहों, धार्मिक आयोजनों तथा विभिन्न प्रतिष्ठित सामाजिक एवं सांस्कृतिक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। उनकी सूफियाना एवं लोक गायकी को देश विदेश के श्रोताओं द्वारा सराहा गया है। एक सफल कलाकार होने के साथ साथ वे एक समर्पित संगीत गुरु भी हैं। उन्होंने अनेक विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा प्रदान की है। वे आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं।
3: सुखविंदर सिंह, ऑल्सो नोन बाय हिज स्टेज नेम दलेर अली, is a renowned Sufi and folk singer of Punjab. With 2 decades of experience in the field of music, he has made significant contribution to the preservation and promotion of Punjab's rich cultural and musical heritage. Over the past 20 years, he has performed at numerous live Qawwali concerts, cultural festivals, and religious events, as well as on various prestigious social and cultural platforms. His Sufi and folk singing has been acclaimed by audience both in India and abroad. In addition to being a successful artist, he is also a dedicated music mentor. He has imparted musical training to numerous students, many of whom are now successfully pursuing career in their respective fields. He is an A-grade artist of Akashvani.
2: आज रात के कार्यक्रम में सुखविंदर सिंह सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे काफी शाह हुसैन, नीमाए मेनू खेड़ियां दी गल ना आख। इस काफी की प्रस्तुति का मुख्य विषय ईश्वरीय प्रेम, अटूट भक्ति और आध्यात्मिक मिलन है। हीर का खेड़ों को स्वीकार करने से इनकार करना, आत्मा द्वारा सांसारिक मोह माया को ठुकराने और अपने प्रियतम जो ईश्वर का प्रतीक है के प्रति पूरी तरह समर्पित होने का प्रतीक है।
3: द सेंट्रल थीम ऑफ दिस काफी रिवॉल्व्स अराउंड डिवाइन लव, अनवेवरिंग डिवोशन एंड स्पिरिचुअल यूनियन। हियर्स रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द खेड़ास सिंबलाइजेस द सोल्स रिजेक्शन ऑफ वर्ल्डली अटैचमेंट्स and its complete surrender to the beloved Ranjha, who represents the divine.

0: सुखविंदर सिंह अब प्रस्तुत करेंगे काफी बाबा बुले शाह। मैं गल उत्थे दी करदा हाँ। ये बुले शाह की एक बेहद रहस्यमय रचना है जो अनिश्चितता, आत्मखोज और ईश्वर के प्रति समर्पण के जरिए साधक की आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। कवि एक ऐसी सच्चाई की बात करते हैं जो भौतिक दुनिया से परे है, एक ऐसा आध्यात्मिक सत्य जिसे आम भाषा में बयां करना बहुत मुश्किल है। वह ईश्वरीय प्रेम और आंतरिक जागृति के अपने अनुभव को साझा तो करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपनी झिझक और डर को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि ऐसे सत्य को केवल तर्क या बुद्धि के जरिए पूरी तरह नहीं समझा जा सकता।
1: दिस वन इज अ डीप मिस्टिकल कॉम्पोजिशन बाय बाबा बुल्ले शाह दैट एक्सप्लोर्स द सीकर्स स्पिरिचुअल जर्नी थ्रू अनसर्टेनिटी, सेल्फ डिस्कवरी एंड सरेंडर टू द डिवाइन। While the poet wishes to share his experience of divine love and inner awakening, he admits his

0: सुखविंदर सिंह अब प्रस्तुत करेंगे काफी बाबा गुलाम फरीद, सोनिया रमजा तेरियां पौंदियां। बाबा गुलाम फरीद की ये सूफी रचना दिव्य प्रेम की अनोखी सुंदरता और आध्यात्मिक आकर्षण का जश्न मनाती है। असल में कवि प्रिय की मनमोहक खूबियों के बारे में बताता है। मन मोहने वाली आंखें, सुंदर बौहें, लहराते बाल, आकर्षक हाव भाव। हालांकि सूफी परंपरा में ये शारीरिक खूबियां दिव्य सुंदरता के उन रूपों की निशानी हैं, जो साधक के दिल को आध्यात्मिक जागृति की ओर खींचती हैं।
1: दिस इज अ मिस्टिकल सूफी कॉम्पोजिशन attributed to Baba Ghulam Farid that celebrates the irresistible beauty and spiritual attraction of the divine beloved. In the Sufi tradition, the physical attributes symbolize the manifestation of the divine that draws the seeker's heart towards spiritual awakening.

0: कार्यक्रम के अंत में सुखविंदर सिंह प्रस्तुत करेंगे एक गीत, रात अद्धी रात तो लंघ गई अगा, पता नहीं यार किथे रह गया। देव हरियाणवी का ये गाना चाहत, इंतजार और जुदाई के दर्द से दिल को छू लेने वाला है। गाना एक ऐसे प्रेमी की भावुक हालत को दिखाता है जो पूरी रात अपने उस प्यारे के आने का इंतजार करता है जो कभी नहीं आता।
1: This song, lyricized by Dev Haryanvi, is a poignant expression of longing, anticipation, and the pain of separation. The song captures the emotional state of a lover who spends the entire night waiting for the arrival of a beloved who never

क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में आप अभी सुन रहे थे सुखविंदर सिंह द्वारा पंजाबी सूफी व लोकगीत। उनके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर प्रदीप कुमार, तबले पर चरण, कीबोर्ड पर पंकज, सारंगी पर सुखविंदर सिंह, बांसुरी पर गुरदीप सिंह तथा मैंडोलिन एवं गिटार पर चरणजीत

0: ढिल्लो। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी जालंधर की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू द पंजाबी सूफी एंड फोक सॉन्ग्स संग बाय सुखविंदर। ही वॉज अकम्पनीड ऑन ढोलक बाय प्रदीप कुमार, तबला चरण सरंगी सुखविंदर सिंह, कीबोर्ड पंकज, फ्लूट गुरदीप सिंह एंड मैंडोलिन एंड गिटार बाय चरणजीत ढिल्लो। This part of the program was a presentation by Akashvani Jalandhar.

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधित चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण समुद्र में वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से रहेगी, जो कि बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग तक हो सकती है। अतः मछुआरों को 10 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। जन सेवाओं को मौसम संबंधित चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो भागों पर भारी वर्षा होगी, जो कि 7 से 11 सेंटीमीटर तक हो सकती है। साथ ही द्वीपों के एक या दो भागों पर गरज के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 11:01 और 7 सेकंड हुए हैं। आज हमारी दूसरी सभा यही संपन्न होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम पर कल सुबह 6 बजे पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 अगस्त सन 2026, सुबह के समय 5:28 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।